0: कोलकाता'स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: बेबी को बेस पसंद है
1: कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

संगे मरमर की मीनारे भी कह रही हैं और मार्बल के फ्लोर जो है वो भी यही कह रहे हैं कि आपकी कशिश आ चुकी है। वेलकम जी, वेरी वेरी गुड वाला मॉर्निंग आपको। मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए जो है बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, क्या है ना कि मेरे जो पार्टनर हैं, जो सुदेव हैं, वो सुबह सुबह शायद उठ नहीं पाए, या उनके कुछ और प्लान्स थे, या शायद कल आमिर कब देखने में इतनी देरी हो गई थी कि सुबह जो है मुझे नहीं लगा कि उनका आना जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने बस मुझे मैसेज किया कि आपको उनका भी बहुत सारा प्यार दे दूँ और आज की शो की जो भागदौड़ है वो मैं अकेले संभाल। खैर, आ जाएंगे वो, तब हम उनसे बात करेंगे और असली रीजन जानेंगे। तब तक जो है बस मेरे साथ आपको जुड़े रहना है बिंदास मॉर्निंग पे। और देखिए, अपनी बहुत सारी हैप्पी हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग विशेस जो है वो भी आप मुझे भेज सकते हैं 3311063 पर। ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, तो जल्दी से जल्दी जो है मैसेज करिए। अगर मैं सुदेव की भाषा में कहूँ तो तुरंत से पहले। अभी देखिए, थोड़ी थोड़ी नींद जो है वो मेरी भी आंखों में बाकी है, और जब तक आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे मैसेज करके, तब तक मुझे नहीं लगता कि मेरी जो नींद है वो खुलने वाली है। सो जल्दी से जो है अपना फोन उठाइए, मैसेज कीजिए और अमेजिंग वाले गाने इंजॉय करते रहिए। रूपदी रानी गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: दिस इज Amaira Dastoor ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: Uy, uy. Guerrañón a la gana. 106.3 Radio Alifer, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए बिंदास वाली मॉर्निंग जो है वो लेकर आ चुकी हूँ। तो देखिए यार, मैंने जैसे कहा था कि मेरी मॉर्निंग जो है वो आप लोगों के मैसेजेस के बिना होती ही नहीं है, सो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने जो है वो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो किए हुए हैं। सो आइए इनके मैसेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जुल्फी जी ने जो है हमेशा की तरह एक बहुत ही प्यारी सी जो है इमेज भेजी है, जिसपे फ्लावर्स जो है वो बने हुए हैं, जिसपे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। एंड उसके बाद अगर मैं सफिया की बात करूं, यस, सभी आने मुझे जो है हाय मैम, गुड मॉर्निंग लिखा है और पूछा है मुझसे कि हाउ आर यू मैम, सो आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। शशिकांत पाटिल जी ने भी मैसेज किया है, एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी जो है इमेज भेजी है जिसपे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, सो थैंक यू सो मच। एंड आज जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग के साथ हैप्पी मदर्स डे भी विश किया है, सो थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए कि आज मदर्स डे है। और मेरी मम्मी जो है वो अब मुझे साल भर जो है तानी नहीं जो है वो सुनाएगी क्योंकि मैं मदर्स डे भूल गई। बट या आज शो में जो है बहुत सारी अमेजिंग बातें मदर्स डे के अराउंड भी करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड रहिए और ऐसे ही मुझे मैसेज जो है वो करते रहिए। थोड़ी सी देर में जैसे सुदेव कहते हैं कि आप पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और कशिश से कितने स्मार्ट हैं ये चेक करेंगे हम। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड स्टोरी में आज का सवाल जो है वो मैं लेकर आऊंगी, सो तैयार हो जाइए अपने गूगल के साथ या अपने दिमाग के साथ, जो भी आप यूज करते हैं। बाकी एक अमेजिंग वाला कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग।
0: देखिए जी, गाने का नाम ना बेवफाइया है। अब मैं आपको सैड नहीं करना चाहती, लेकिन गाने को गाने की तरह एंजॉय करो यार। आना वापस यहीं पर

गाने का नाम जाना, मूवी का नाम प्यार तूने क्या किया, ना गाने के बारे में और ना गाने मतलब ना मूवी के बारे में और ना गाने के बारे में मुझे सच में नहीं पता था। और धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे म्यूजिक का जो प्रस्पेक्टिव है वो बड़ा होता जा रहा है और मुझे और ज्यादा गानों के बारे में पता चलता जा रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, होता ये है ना कि जैसे जैसे आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपकी समझदारी बढ़ती है और साथ में ये भी होता है कि हम पुरानी चीज़ें जो है वो भूलते जाते हैं। सो बस मैंने ये बीड़ा उठाया है और सुदेव के साथ मिलकर हर रोज़ आपसे जो है एक ऐसा सवाल पूछती हूँ जो आपने जो है स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा या ऐसी जनरली जो है आपको पता होगा लेकिन आप अब अचानक से भूल चुके हैं। तो बस अपने दिमाग पे थोड़ा सा जो है जोर डालिए, दिमाग को थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज करने का मौका दीजिए और जल्दी से अपना फोन उठा के मुझे आंसर कर दीजिए। आज का जो सवाल है वो बड़ा ही आसान सा है, मतलब बहुत ही आसान सा है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद ना है तो आप अपने गूगल की, चैट जीपीटी की, जेमिनी की, जिसकी चाहते हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं। आज बस आपको मुझे इतना बताना है कि GPS का फुल फॉर्म क्या होता है। 3311063 जो है ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आपको बताना है। GPS, हाँ जी, इससे जो है हम लोकेशन जो है वो ट्रैक करते हैं और मुझे तो लगता है कि कतर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यही होती है क्योंकि हमें रास्ते याद ही नहीं हो पाते, एटलीस्ट मेरे साथ तो देखो यही होता है। 3311063 ये है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर, इस पर जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए और मुझे आंसर दे दीजिए यार। मतलब आपके लिए तालियां वालियां जो है वो मैं बजा दूंगी। खैर बहुत सारे लोगों का गुड मॉर्निंग वाला मैसेजेस भी आए हुए हैं, वो भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल ये फील गुड वाला गाना जो है आर आपकी रेडियो सेट्स पर 3 इडियट मूवी से, तो मॉर्निंग वाला मोटिवेशन लीजिए एंड मेरे साथ कहते रहिए चियो बिंदास।

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: मेरा देखिए कंफर्ट वाला गाना है ये, बिल्कुल दाल चावल की तरह, भाग मिल्खा भाग मूवी से, गाने का नाम ओ रंगदेव। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एंड यार देखो, होता क्या है ना कि गाने ना सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गाने होते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होते हैं, और वो पहली बार आप सुनो तो आपको थोड़े से तो ऐसे लगते हैं कि यार ये क्या चल रहा है। बस आज मेरे साथ कुछ गानों में वैसा हुआ था जो गाने मैंने आपको सुनाए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर करनी होती है तो ऐसा तो होता है। माचा पहली बार में तो पसंद नहीं आ गई थी ना, देखो। अब देखिए यार, आज जो है ब्लैकबोर्ड स्टोरी वाले जो कॉन्टेस्ट है, उसमें मैंने ना बहुत ही अमेजिंग सा आसान सा सवाल आपसे पूछा था कि यार मुझे ज़रा बताओ कि GPS का फुल फॉर्म क्या होता है। एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रशीन जी ने जो है वो हमें मैसेज किया था। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग कहा था, एंड उन्होंने कहा था एक कोट, वन ऑफ द हैप्पीस्ट मोमेंट इन लाइफ इज व्हेन यू फाइंड द चेंज टू लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट चेंज। गुड मॉर्निंग जियो बिंदासी, उन्होंने पहले कहा था जो मैसेज मैं पढ़ नहीं पाई थी। उसके बाद उन्होंने आंसर दिया है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और उसके बाद जो है हमें एक और मैसेज आया है सृष्टि का, और सृष्टि ने जो है वो आंसर दिया है कि आंसर जो है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए बिल्कुल ही सही आंसर दिए हैं। एंड GPS एक ऐसी चीज़ है जो हम आजकल जो है डेली बेसिस पे ही यूज़ कर रहे हैं, उसके बिना हम चल ही नहीं सकते, दो कदम हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। सो मुझे लगता है ये तो बेसिक नॉलेज जो है ये होनी चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। खैर, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन गानों को आप इंजॉय कीजिए और मेरे साथ आप कहते रहिए जियो बिंदास। सुदेव को जो है याद करते रहेंगे और बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग बातें जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे खैर अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मैं चाहती हूँ AC का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ा के आती हूँ। आप जो है नया नवेला गाना जो आपके रेडियो सेट्स पर आने वाला है, जिसे हम कहते हैं फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, उसे इंजॉय कीजिए।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana. Say wow.
0: गाने का नाम है wow. हारी संधू का एक गाना है. Wow को उल्टा कर दो तो mom बन जाता है.

0: Radio Olive, your happiness frequency. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

ये मूवी किसी को याद हो या ना हो, एक गाना सबको याद है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव से, मैं हूं आपकी कशिश। शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ और आपकी मॉर्निंग्स को और ज्यादा बिंदास करने की इंटेंशन से यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अब देखिए, बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर्स भी दे दिए, सब हो गया, लेकिन अब वक्त आ गया है आपको बाहर मौसम का हाल बताने का। सो यानी अगर आप इस वक्त अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आज मौसम कैसा रहने वाला है, ताकि उस हिसाब से आप कपड़े पहन सको या उस हिसाब से सनस्क्रीन थोड़ी एक्स्ट्रा लगा लो या जो है शेड्स पहन लो, कैप पहन लो। सो आज का जो करंट टेम्परेचर इस वक्त अभी हो रहा है वो है 28 डिग्री सेल्सियस। आज का लोएस्ट टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और ओए होए होए होए होए, ये पढ़ के मुझे गर्मी लग रही है। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। बताओ जी बताओ, इतनी गर्मी कहाँ लेके जाएंगे इतनी गर्मी हम। खैर, बहुत सारे लोग जो है मुझे बहुत सारी अमेजिंग वाली पिक्चर्स जो है वो भेज रहे हैं कि उनके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है, आसमान कैसा दिख रहा है, रोड कैसी दिख रही है। आप लोग किस बात के का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जल्दी जो है गाड़ी अगर रुकी हुई है सिग्नल पे तो फोटो खींचिए, अगर आप कहीं खड़े हुए हैं तो फोटो खींचिए, अमेजिंग वाली वॉलपेपर वर्दी फोटोज जो है वो मुझे भेज दीजिए यार, मैं भी जरा देख लूँ कि बाहर का मौसम माहौल कैसा हो रहा है। वरना इस गूगल से पूछ के तो मैं आपको मौसम बता ही रही हूँ ना यार। अब आप जरा अपनी आंखों से जो है मुझे बाहर का नजारा जो है वो दिखाइए, बिकॉज स्टूडियो में एक भी खिड़की नहीं है यार, आसमान बादल कुछ दिखता ही नहीं है। 3311063, मैं फिर से नंबर बोल देती हूँ, 3311063, ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है। आप इस पर फोटो क्लिक कर जो है भेज सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग जाएगा यार, प्लीज प्लीज प्लीज। फिलहाल पति पत्नी और वो दो

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

बाहर की नजारे देखने के लिए। विकी विद्या का वो वाला वीडियो मूवी से जो है ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑल पर और बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड बिंदास मॉर्निंग के चलते देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जरा बाहर का माहौल कैसा हो रहा है, मौसम कैसा हो रहा है, ये मुझे जरा बताइए फोटो वोटो भेज के। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो रिचुअल के अनुसार जो है नियम के अनुसार हमें जो है बहुत सारी फोटोज भेजी है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली भेजी है सात भाई ने, बहुत ही अमेजिंग रोड की पिक्चर है। एंड कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बहुत ही खूबसूरत आता है जब भी किसी भी फोटो की बात आती है। उसके बाद इदरीस भाई ने जो है ओ हो सच में वॉलपेपर वर्दी फोटो जो है वो भेजा हुआ है, गुड मॉर्निंग कहा है, गुड मॉर्निंग इदरीस भाई। मोहम्मद सामी जो है सामी जी जो बोगन विलिया की फोटोज हमें भेजा करते हैं, उन्होंने भी कहा है अस्सलाम वालेकुम कशिश। वालेकुम अस्सलाम भाई। एंड बहुत ही खूबसूरत फोटो है, एंड आज ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्टर के साथ इन्होंने फोटो लेने का ट्राई किया है। देखिए सामी भाई ऐसे लेते ना तो ही अच्छा लगता है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, संगीता जी ने जो है सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन पूछा था ना उस वक्त एक फोटो भेजी थी जो इन्होंने अपने वीकेंड पर जो है अपने घर से की बालकनी से ली थी, एंड बहुत खूबसूरत फोटो है, बहुत बहुत बहुत खूबसूरत फोटो है। थैंक यू सो मच संगीता जी। एंड और भी बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते जा रहे, ओ हो ओके ठीक है। सो नेहा जी जो ने जो है मुझे अभी अभी एक पिक्चर भेजी है जो उन्होंने बहुत

थ्री मूवी से. ये ट्राई कर आपके रेडियो सेट्स पर बेनी दयाल की आवाज में. इसे एंजॉय कीजिए. थोड़ी सी देर में हेल्थ की बात करेंगे. तब तक मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, नए

0: 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

मुझसा तो देखो वैसे भी कोई नहीं है। और आप लोगों जैसा भी कोई नहीं है। क्रिश का गाना सुनेगा जब भी मैं क्रिश मूवी का कोई भी गाना सुनती हूँ ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही मीम आता है, क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश का गाना सुनेगा। फिलहाल अमेजिंग वाले गानों के बीच मैं हूँ आपकी कशिश, आ गई 106.3 रेडियो आलिफ पर लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग। और यार गाने सुन के ना कुछ तो हो जाता है मुझे मतलब कुछ अलग अलग सी मेरी बॉडी में सरसराहट, फड़फड़ाहट, थरथराहट, फड़फड़ाहट जो है वो शुरू हो जाती है। गाने सुन के मैं इतनी ज्यादा मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। अब क्या होता है ना कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ गाने चलाकर, मतलब गाने जब चल रहे होते हैं रेडियो पे तो मैं वीडियो पे लिपसिंक कर रही होती हूँ, एंड मैं सच में भूल गई थी कि मुझे अभी आकर आप लोगों से बात करनी है। खैर ये अच्छी बात है कि जो अगली मुझे आपसे बात करनी है इसके बारे में मैं स्टडी पहले ही कर चुकी थी, एंड ये वाली बात ना मैंने कल मतलब जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तब मैंने जो है इस पर ध्यान दिया था कि म्यूज़िक जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से एक दवाई काम करती है उसी तरीके से म्यूज़िक भी काम करता है, ये तो हम काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, लेकिन म्यूज़िक का आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर पर एक बहुत ही अहम असर होता है। सो जब भी आप गाने सुनते हैं आपका ब्रेन जो है वो एक पोजिशन पर आ जाता है जहां पर वो ईज की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहां पर वो काम हो जाता है। सो आपको जब भी स्ट्रेस होता है इसीलिए कहा जाता है कि अपना फेवरेट म्यूजिक जो है वो आप सुनिए। लेकिन जब आप अपना फेवरेट म्यूजिक ज्यादा बार सुन लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि यार अब बोरियत हो जाती है। सो आपको जो है 200 बार यानी 200 बार से ज्यादा जो है एक गाना सुनना पड़ता है जब तक वो आपके मन से पूरी तरह उतर ना जाए। Yes. तो अगर आप कोई गाना जो है अब बहुत सुना करते थे लेकिन अब नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप 200 बार से ज्यादा उस गाने को सुन चुके हैं। खैर हेल्थ पे और भी बहुत सारा असर होता है, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, ये सब जो है रिलीज हो जाता है जब आप गाने सुनते हैं। सो बस मैं आपका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जो है एक अमेजिंग गाना ले आई हूँ। मुन्ना भाई MBBS का देख ले सुनील चौहान के बाद में आ रहा है गाना, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: इकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
1: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

ये जो गाना है, मूवी का नाम मेरी क्रिसमस है. कुछ समझ आ रहा है आपको? मतलब क्या सोच के गाने का नाम रख दिया, मूवी का नाम रख दिया? वेलकम जी, गुड मॉर्निंग. 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कसूस और आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ चुकी हूँ मैं. अब देखिए मेरी जान, बहुत सारी बातें जो है वो हम कर ही रहे थे एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि म्यूजिक आपके हेल्थ के लिए कितना अच्छा है एंड आपको एक गाने को जो है एटलीस्ट 200 टाइम्स जो है वो सुनना पड़ता है जब तक वो आपके मन से पूरी तरह उतर ना जाए. यही खाने के साथ भी होता है और यही गानों के साथ भी होता है. एंड अभी फ़िलहाल मेरे जहन में सिर्फ एक ही गाना जो है वो लूप पे चल रहा है और वो है कोक स्टूडियो भारत का एक सॉन्ग जिसमें आदित्य रिखारी जो है उन्होंने गाना गाया है. एंड मैं सच बताऊँ, मैं अग्री करना चाहूँगी इस बात से. मैंने ये बात मानना चाहूँगी कि मुझे जो है जब मैं भोपाल में थी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं आदित्य रिखारी का जो कॉन्सर्ट था, लाइव कॉन्सर्ट था, उसके लिए जो है आदित्य रिखारी के लिए ओपन करूँ. मतलब आदित्य रिखारी को जो है स्टेज पे बुलाऊं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करूं. एंड जब मुझे बताया गया था कि तुम्हें आदित्य रिखारी के लिए ओपन करना है, तब मैं आदित्य रिखारी को नहीं जानती थी. मतलब उनके गाने मैंने सुने हुए थे, साहेबा आए घर काहे ना, और ऐसे 2-3 गाने जो थे वो मैंने उनके सुन रखे थे, लेकिन मैं उन्हें पहचानती नहीं थी. एंड जब मुझे दिया गया ये टास्क, तो मैंने बोला ठीक है कोई सिंगर, कोई बात नहीं. फिर मैं जब स्टेज पर गई, मैंने उन्हें इनवाइट किया, मैंने उनसे बातचीत करी एंड इट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट. मतलब मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी क्योंकि इतनी ह्यूज ऑडियंस के सामने इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है वो आपसे बातचीत कर रहा है, बहुत ही बड़ी बात होती है. एंड मैं बहुत खुश हो गई. बट फिर भी मैं आदित्य रिखारी की उतनी बड़ी बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी. ठीक है, 1-2 गाने मुझे पता थे, लेकिन कतर आने के बाद कोक स्टूडियो भारत का एक गाना मैंने जो है लूप पे सुनना शुरू कर दिया जिसका नाम है ए अजनबी. एंड आई किड यू नॉट, दिस सॉन्ग इज अमेजिंग. और मैं ना सच में अभी तक ये गाना 200 बार सुन चुकी हूँ शायद, लेकिन फिर भी अभी तक मैं इससे बोर नहीं हुई हूँ. शायद मेरा वो बोर करने वाला टाइम जो है वो आ जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन ये गाना इतना अमेजिंग है ना कि अब मेरे दिन की शुरुआत भी इसी गाने के साथ होती है और मेरे दिन का एंड जो है वो भी इसी गाने के साथ होता है. तो आइए आज आपकी मॉर्निंग की शुरुआत भी इसी गाने से कर देती हूँ. गाने का नाम है अजनबी, आदित्य रिखारी का ये गाना है, कोक स्टूडियो भारत से. इंजॉय कीजिए और मुझे बताना आपको कैसा लगेगा. 3311-1063 पर इंजॉय कीजिए गाना, कहते रहिए बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: मैं ना कई बार इतना खो जाती हूँ आतिफ असलम जी के गाने में कि भूल ही जाती हूँ कि मुझे बात भी करनी होती है। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो अलफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। अब आतिफ असलम जी के ये गाने कुछ इस तरीके से हैं कि अगर मेरे खून में जो है आयरन की कमी है तो मुझे आप आतिफ असलम जी का गाना जो है वो सुना दीजिए, अगर मेरी बॉडी में पानी की कमी है तो आप मुझे आतिफ असलम जी का गाना सुना दीजिए, अगर किसी भी टाइप की कोई भी कमी कहीं भी खल रही है तो बस आतिफ असलम जी का गाना जो है उस कमी को पूरा कर सकता है, सिवाय एक कमी के, जो कमी क्रिकेट देख के पूरी होती है। सो T20 लीग में कल क्या कुछ हुआ ये बताने के लिए मैं आ चुकी हूँ। देखिए, अब कल जैसे हमने बात करी थी कि कल दो बहुत ही अमेजिंग टीम्स का मैच जो है वो हुआ, ठीक है, गुजरात और राजस्थान के बीच में हाई स्टेक मैच था जहां पर टॉप फोर की लड़ाई जो है वो हो रही थी, जिससे अगर राजस्थान जीतता तो वो सेकंड नंबर पे आ जाता एंड गुजरात जीतता तो वन फोर आ जाता एंड ये सब बातें हमने की थी, पूरा कैलकुलेशन हमने किया था। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या कल के मैच में। सो कल के मैच में जो है गुजरात और राजस्थान के बीच में शुभमन गिल ने अपने बल्ले का जो है कमाल दिखाया, अमेजिंग वाला गेम जो है वो दिखाया एंड राजस्थान को जो है 77 रन से हरा दिया। हाँ जी, गुजरात जो है वो 77 रन से कल जीत गई। 77 रन से जीतना यार देखो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है। सो जीत चुकी है, अब टेबल का हाल जो है वो किस तरीके से है और राजस्थान जो है वो कौन से पोजिशन पर पहुँच चुकी है ये सब मैं आपको बताऊँगी, लेकिन थोड़ी सी देर बाद। तो तब तक जो है आप कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करके आओ, बाकी आज कौन सी टीम्स का मैच है एंड क्या कुछ खास होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड रहिए
1: रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग
0: गाने का नाम जी सुनिए।

कोई रोक लो यार मुझे, कूद कूद के डांस करा है मैंने अभी। वैसे तो शायद ये गाना रिलीज भी नहीं हुआ था, मतलब जब मैं पैदा हुई थी तभी गाना जो है रिलीज हो चुका था शायद, मुझे उतने अच्छे से पता नहीं है, लेकिन लेकिन लेकिन ये बहुत पुराना गाना है एंड अभी भी इस गाने की वाइब जो है वो बिल्कुल कम नहीं हुई है। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव से, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए जो है एक बहुत अमेजिंग वाला शो बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। सुबह से कोशिश में जा रही हूँ कि आपकी मॉर्निंग को और ज्यादा बिंदास, और ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ज्यादा वधिया वधिया बढ़िया बढ़िया बना दूँ। अब देखिए यार, जब मूड बढ़िया करने की बात होती है तो क्रिकेट की बात तो आती ही है देखो, और आज का दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आज एक नहीं बल्कि दो दो मैच हैं, और वो भी जैसे छोटे मोटे मैच नहीं है, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग वाले टीम्स के अमेजिंग वाले मैच हैं। सो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी सुदेव होते तो मैं उनको बोल रही होती कि आज खुश तो बहुत होगी तुम, क्योंकि उनकी फेवरेट टीम का मैच है एंड वो भी मुझे यही कह रहे होते कि आज खुश तो बहुत हो तुम होगे तुम, है ना, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम का मैच है। सो अगर आज मैं आपको बताऊँ तो आज जो है दो अमेजिंग वाली टीम्स, यानी आज है चेन्नई का मैच और बैंगलोर का मैच, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। सो चेन्नई का मैच जो है वो लखनऊ के साथ है एंड बैंगलोर का मैच जो है वो मुंबई के साथ है। जो चेन्नई का मैच है वो चेन्नई में खेला जाएगा एंड बैंगलोर और मुंबई के बीच में मैच जो है वो रायपुर में खेला जा रहा है, एंड जो पॉइंट्स टेबल है अब वो पूरा ऊपर नीचे हो चुका है, यानी जो हमने कल देखा था, जो सिचुएशन कल वाले टेबल की थी वो बिल्कुल बदल चुकी है। हैदराबाद जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच चुकी है कल के मैच के बाद, गुजरात जो है वो सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुकी है, पंजाब थर्ड पोजीशन पर है और बैंगलोर जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, और कल के मैच में हारने के बाद राजस्थान जो है वो खिसक के फिफ्थ पोजीशन पर आ गई है। हाँ जी, यानी जो है टेबल पूरा उल्टा पुल्टा हो चुका है, और आज का जो मैच है, यानी आज के जो मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो साथ में देखेंगे आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है आज जीतने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले मैच में चेन्नई जीत जाएगी और सेकेंड मैच में जो है वो बैंगलोर जीत जाएगी, लेकिन पिछले मैच में बैंगलोर की एक हार के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए, बट कोई बात नहीं जी, मैनिफेस्टेशन इज द की, सो मैनिफेस्ट करते रहेंगे बैंगलोर की जीत को और साथ में एक अमेजिंग वाला गाना भी एंजॉय करेंगे। शिल्पा राव की आवाज में, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ गाने का नाम है मुड़ी मुड़ी, तो मैं भी जरा मुड़ के जाती हूँ, चाय पी के फटाक से आती हूँ, आप ही गाना एंजॉय करो और मेरे साथ कहते रहो जी जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में. बिंदास
1: मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. बिंदास मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: ये गाना ना वैसा सा लगता है जिन लोगों को किताबें बहुत पसंद होती हैं या जो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं वो लोग ऐसे गाने सुनते हैं। मतलब मेरा भी कई बार ऐसा वर्जन बाहर आ जाता है जहां पर मैं भी ऐसे गाने सुनती हूँ। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश। और देखिए यार, हम ना बहुत अमेजिंग चीज़ों पर बात करते रहते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन मैं ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढती रहती हूँ कि यार कतर में क्या कुछ नया होने वाला है जो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों से शेयर कर दूँ, या मैं बस वहाँ जाकर एक्सप्लोर कर लूँ। क्योंकि यार मतलब अगर आप इतनी दूर आए हो तो ऐसे लाइफ एक्सप्लोर किए बिना कैसे जा सकते हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर ली हैं। मैंने जो है हॉट व्हील्स मैं गई, उसके बाद जितने भी इवेंट्स होते जा रहे हैं मैं उन सब में जा रही हूँ। लेकिन लेकिन लेकिन मैं ना कहीं ये सोच रही थी कि लिटरेचर से जुड़ा हुआ कुछ होना चाहिए या बुक्स से जुड़ा हुआ कुछ होना चाहिए, एंड फाइनली मुझे ऐसा कुछ मिल गया है। सो दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो होने वाला है 14 मई से, जिसकी तैयारियां जो है वो एकदम जोरों शोरों से चल रही है। मैं बताऊं कि दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में जो है ये बुक फेयर होने वाला है, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मेरे आसपास के लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। अगर आप बुक लवर हो तो क्या आप यहाँ जाने वाले हो, या क्या आपने पहले जो है ये इंजॉय किया है, क्योंकि 35th सेशन है आई थिंक ये। सो आप मुझे बताइए 3311063 पर कि क्या आप यहाँ पर जाने वाले हैं, कितने एक्साइटेड हैं, एंड ऐसे और कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आपकी नज़र में है जहाँ पर मैं जाकर एक्सप्लोर कर सकती हूँ, एंड आप लोगों से भी मुलाकात हो सकती है मेरी। सो मुझे बताइए 3311063 पर। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर एप की रेडियो सेट्स पर,
1: रेडियो

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा।
3: धुरंधर रिवेंज का ये गाना आ रहा है रेडियो सेट्स पर। जॉय कीजिए और मेरे साथ कहिए जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।
3: टिंडर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
4: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
5: आई वाज टोटली वर्थ इट।
4: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: चुकी
1: हाँ हाँ प्लीज बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं।
2: आके

0: ये गाना आपने एंजॉय किया
1: है?
0: मुझे देखो थोड़ा थोड़ा ही समझ आया ये गाना. वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो अलिफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ. और सुबह से इसी कोशिश में लगी हूँ कि आपकी इस बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बना सकूं. अब क्या हुआ कि आज ना मैं और मेरी मम्मी सुबह से ही, जब से मैं उठी हूँ तब से किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे. एंड वो डिस्कशन जो है रात से चल रहा था और मैं उनको रिप्लाई कर रही थी. अब इसी चक्कर में आज सुबह में उन्हें अभी तक मदर्स डे विश नहीं कर पाई. मैंने कॉल लगाया बट वो नेटवर्क से बाहर थी तो उनको कॉल लग नहीं पाया. एंड फिर उन्होंने सामने से मुझे हैप्पी मदर्स डे लिख के भेज दिया. अब मैं उन्हें किस तरीके से यकीन दिलाऊं कि मम्मी मुझे मदर्स डे याद था और मैं आपको विश करने के लिए ही कॉल कर रही थी. उन्हें तो अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे पहले मैसेज किया और उन्होंने याद दिलाया कि आज मदर्स डे है और तुम कैसी बेटी हो, तुमने तो याद ही नहीं दिलाया, याद ही नहीं किया. सब बच्चे अपनी मम्मी के लिए स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, केक भेज रहे हैं, तुम कुछ करते ही नहीं हो, सब मुझे ही करना पड़ता है. मम्मी कैसे बताऊं मैं आपको, मैं कतर में हूं, आप इंडिया में हो. यहाँ के अभी 9 बजे है, आपके यहाँ बज चुके हैं अभी 12. मैं तो अभी नींद ही खुली है मेरी. सो देखो मॉम जो है हर तरीके की, मॉम जो है हर तरीके की नहीं कहूँगी, मतलब हर किसी की मम्मी जो है वो बिल्कुल सेम होती है. उनके डायलॉग सेम होते हैं, उनकी बातें सेम होती हैं, बस शक्ल का फ़र्क होता है. एंड यही जो है बात आज हम करने वाले हैं कि मदर्स डे पर क्या कुछ खास आपने अपनी मम्मियों के लिए प्लान किया है, ये मुझे बताइए, आइडिया दीजिए ताकि मैं भी अपनी मम्मी के लिए प्लान कर सकूं. बल्कि आज बात जो है वो ये करने वाले हैं, आंसर आपको मुझे ये देना है कि मम्मियों के ना कुछ ऐसे पेटेंट डायलॉग्स होते हैं जो मम्मी बोलती ही बोलती है, और जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं हम में भी वो आदतें आ रही हैं, हम भी वो डायलॉग्स बोलने लग गए. तो बस आपको ये बताना है कि सबसे कॉमन मम्मियों का डायलॉग कौन सा है, कौन सी ऐसी बात है जो मम्मियाँ जो है अक्सर कहती ही रहती हैं. कि जैसे रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू देखने के बाद मम्मी कहती है ना कि इससे अच्छा तो मैं ही बना देती, ये तो मैं ही घर पर बना देती. तो आप बताइए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मम्मियाँ अक्सर बोलती हैं और मम्मियों के डायलॉग्स जो हैं उन्हें पेटेंट कर देना चाहिए. फिलहाल इश्क दा चेहरा गाना आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए. और 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर जो है आप मुझे बता सकते हैं कि मम्मियों के डायलॉग कौन से होते हैं पेटेंट वाले. 3311063 ये गाना एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: रेडियो ऑलिव पर सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
1: हम सब जानते हैं माइकल जॉर्डन को, द फ्लाइंग लेजेंड। मगर लेजेंड बनने से पहले एक 21 साल का लड़का जो नाइकी के साथ मीटिंग तक नहीं करना चाहता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तब उनकी माँ डेलोरेस जॉर्डन ने कहा, बेटा फ्लाइट पकड़ो और मेरी बात सुनो। वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, वो एक विजन था। माइकल की मां ने इंसिस्ट किया कि हर जूते के सेल पर माइकल को एक परसेंटेज मिलना चाहिए। उन्होंने माइकल को सिखाया कि अपनी वैल्यू कैसे पहचानते। मां सिर्फ हमारे लिए खाना नहीं बनाती, सिर्फ प्यार नहीं करती, वो हमारा फ्यूचर भी डिजाइन करती है। टुडे वी सेलिब्रेट द वुमन हु टॉट द गोट हाउ टू फ्लाई। This is for the first CEO of our lives. Happy Mother's Day.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: This is Deepika Padukone.
5: Deepika Padukone.
4: Radio Olive 106.3.
6: I'm in number one. Radio Olive.
7: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
8: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
1: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

अगर मैंने अपनी मम्मी को थोड़ा परेशान किया तो वो ये कहने वाली है। अमेजिंग वाला गाना आपने इंजॉय किया।

0: मम्मी को खुश करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी। मैं उन्हें जो है यहाँ से केक भेज सकती हूँ, मैं उनके लिए कोई गिफ्ट ऑर्डर कर सकती हूँ इंस्टेंट डिलीवरी ऐप से। लेकिन क्या होगा, ऐसा क्या है जो हमारे पेरेंट्स को असली खुशी दे सके? इसका आंसर मुझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मिला, और वो कोई गिफ्ट नहीं है। एक्चुअल में हुआ यह है कि दिल्ली में एक एंटरप्रेन्योर है, और उन्होंने अपनी टीम को जो है वो 10,000 इंडियन रुपीज़ दिए हैं एंड 10 दिन की छुट्टी दी है अपने पेरेंट्स को वेकेशन पर ले जाने के लिए। और ये जो 10 दिन की छुट्टी अपने पेरेंट्स पे को वेकेशन पर ले जाने के लिए, और वो जो 10,000 रुपये हैं, ये एम्प्लॉयज़ कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आज के दिन यानी मदर्स डे के दिन उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है अपनी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ को ये छुट्टी और ये अमाउंट देकर। कितना अच्छा थॉट है यार। मतलब हम उनके बच्चे होकर नहीं सोच पा रहे कि यार अपने पेरेंट्स को जो है वेकेशन पर ले जाते हैं या कहीं घूमने के लिए लेके जाते हैं, एंड उस एंटरप्रेन्योर ने, उस डायरेक्टर ने कंपनी के ये सोचा कि यार मैं अपने एम्प्लॉयज को ऐसी छुट्टी दूंगा। और देखना अभी भी इनमें से जो है आराम से 5-6 ऐसे एम्प्लॉयज मुझे मिल जाएंगे जो इन 10 दिनों की छुट्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे, अपने पेरेंट्स को कहीं नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाना यार, घूमो। मैं तो अभी जो है इंडिया में समर वेकेशन चल रहे हैं एंड मेरी मम्मी जो है टीचर हैं एंड उनकी भी समर वेकेशन चल रहे हैं, एंड मेरी जो पूरी फैमिली है वो कहीं ना कहीं घूमने जाती थी हर समर वेकेशन पर, एंड मैं इतना मिस कर रही हूँ ना उन्हें कि मैं क्या ही बताऊँ। पर कोई बात नहीं जी, ठीक है, हो जाएगा जल्दी, जब जाएंगे इंडिया तब जाके घूम लेंगे। पर आज मैंने आपसे सवाल ये किया है कि मदर्स डे के चलते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मम्मियों के कुछ पेटेंट डायलॉग्स होते हैं जो वो अक्सर बोलती हैं, जैसे रेस्टोरेंट में जाकर बोलती हैं कि ये क्यों ऑर्डर कर रहे हो, ये तो मैं घर पर ही बना देती, या ऐसा ही कुछ भी। सो आपकी मम्मी जो है वो क्या कहती है, या अगर आप एक मॉम है सो आपको क्या लगता है कि ये तो अब मेरा डायलॉग बन गया है, ये बिना बोले तो मेरे बच्चों का काम ही नहीं चलता। सो 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर बस टेक्स्ट जल्दी से टाइप करिए, ऑडियो नोट आप भेज सकते हैं। सो जल्दी जल्दी से मुझे बताइए कि ऐसे कौन से पेटेंट डायलॉग्स हैं जो अक्सर मम्मियाँ जो है वो बोल देती हैं। और बाकी एक थोड़ा हट के जो है वो थॉट भी मुझे आया है इंस्टाग्राम देख के ही, ऑफकोर्स उसमें एक लड़का कह रहा था कि मदर्स डे के दिन तो मेरी मम्मी को मुझे ट्रीट देनी चाहिए क्योंकि मैं हूँ ना, मैं हूँ जिसने उन्हें मम्मी बनाया है। देखो बात तो सही, अगर हम नहीं होते तो हमारी मम्मी जो है मम्मी कैसे होती, कौन उन्हें मम्मी कहता। तो एक गिफ्ट तो हमें भी बनता है। बाकी इस फालतू की बात के साथ इसे कवर करने के लिए एक अमेजिंग वाला गाना, जबरदस्त वाला गाना जो है आपकी रेडियो सच पर से, एंजॉय कीजिए।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
0: सन ऑफ सरदार 2 से ये गाना, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए चियो बिंदास।

सलाम ही नहीं, सलाम है उन लोगों को जो मॉम की लैंग्वेज को डिकोड कर लेते हैं। धूम मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूं आपकी कशिश और आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ चुकी हूँ। अब देखो यार, मम्मियों की लैंग्वेज को डिकोड करना ना मेरे हिसाब से तो काफी मुश्किल टास्क है। वरना मेरी मम्मी जो है, जब मैं वहां पर थी घर पर, तो मुझसे ऐसे ही कुछ बात करती थी वो कि वहां से वो उठाकर दे दो। कहां से क्या उठाकर दे दो? वहां से उसके लिए वो उठा के दे दो। मम्मी कहां से क्या उठा के देना है? अरे वहां से वो उठा के दो। मम्मी के वर्ड सेम रहते थे, बस उनकी आवाज जो है वो ऊंची होती रहती थी। और अगर मैं ये कह दूं कि मम्मी वहां पर वो नहीं है, तो मम्मी कहती थी अगर मैं वहां आ गई और मुझे मिल गया तो फिर देखना। और ये जो है दुनिया की सबसे स्कैरी चीज होती थी। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि मम्मी के ऐसे कौन से पेटेंट डायलॉग्स हैं जो आपको याद हो चुके हैं। आज मदर्स डे है तो हम उस पर बात करेंगे। सो मोहम्मद यूसुफ खान जी ने मुझे बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो है वो लिख के भेजा है कि मम्मी को जो है, जब मम्मी कुछ मार्केट से लाने को बोलती थी और आप कहते थे कि नहीं मम्मी मैं नहीं जा रहा, तो मम्मी कहती थी ना ठीक है लाओ मेरी चप्पल, लाओ मेरा बैग, मैं खुद जाके ले आऊंगी, किसी काम के बच्चे नहीं है बस। क्या आपकी मम्मी ने भी आपसे ऐसा कुछ कहा है? बताइए मुझे मैसेज करके 3311063 पर। और देखो यार, थोड़ा सा वक्त निकालो, अपनी मम्मी को जो है फोन करके हैप्पी मदर्स डे विश कर दो, उन्हें अच्छा लगेगा यार। वो हाँ, हो सकता है ऐसा कहेंगे कि बस एक दिन आती है अपनी मम्मी की याद, पूरा दिन तो याद नहीं करते। ठीक है, सुन लेना, बट उन्हें विश कर दो। तब तक जो है शुक्र अदा करते हुए कि हमारी मम्मी जो है उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, हमें इतना कुछ प्यार जो है वो दिया। ये गाना एंजॉय कीजिए। शुक्र सलीम मर्चन और सोनू निगम की आवाज में ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इसे एंजॉय करते हुए अपनी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे कहो और मेरे साथ कहो जियो बिंदास।

0: माँ, मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

श्रेया घोषाल की आवाज में अमेजिंग वाला गाना आपने एंजॉय किया। 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और बिंदास। मॉर्निंग पे जो है हमने बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती मजा किया एंड अब जो है वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का और आपको चाचा बाय बाय बोलने का। सो मुझे जो है दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, गाड़ी धीरे धीरे हले हले चलाते रहिएगा और अभी मुस्कान जो है बस आने ही वाली है। सो उसका एक बड़ी सी मुस्कान के साथ जो है स्वागत कीजिएगा। और बाकी 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, सो अगर मेरी याद सताए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। फिलहाल ओ रोमियो मूवी का ये ट्रैक आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय कीजिए, मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे बिंदास मॉर्निंग पर। तो मेरे साथ बस कहते रहिए, सी यू बिंदास, टेक केयर।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है. और आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज सिर्फ संडे नहीं मदर्स डे भी है. और ऑनेस्टली मदर्स को डिस्क्राइब करना ना इस दुनिया का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि वो सिर्फ एक रिलेशन नहीं है, रिमाइंडर है, कम्फर्ट है और कभी कभी फ्री थेरेपिस्ट भी है. आपने कभी नोटिस किया है कि हम चाहे कितना भी बड़े हो जाएं लेकिन मदर्स के क्वेश्चंस ना हमेशा सेम रहते हैं. खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, कब पहुँचे, कहाँ पहुँचे, किसके साथ हो, घर कब तक जाओगी, सारी चीज़ें. मतलब वो हमसे कितना भी दूर रहें सवाल सेम होते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन उनमें पूरी केयर होती है. सो हम यूजुअली ये रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कितनी साइलेंट सेक्रीफाइसेस किए हैं. माँ ना हमेशा लाउड लव नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा चुपके से आपको सारी चीज़ें देकर जाती हैं और शायद इसीलिए घर की फीलिंग जो होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है. वो एक्चुअली लोगों से आती है, वो एक्चुअली पर्सन से आती है. तो अगर आज पॉसिबल है तो फटाफट से कॉल करो, अपनी मदर्स को एक मैसेज भेजो और यू नो मदर्स को एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपके साथ बैठने का, आपसे बातें करने का. उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट से ना कोई लेना देना नहीं होता, अटेंशन चाहिए होता है उन्हें आपका. सो आई विल से कि आज उनके लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट ही सही, शाम को अपना एक अलार्म लगा लीजिए कि मम्मी के साथ बैठ के कुछ बातें करनी है. और इसी के साथ यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। रेडियो ऑलिव पर सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
1: एक कामयाब डॉक्टर, एक बिजी प्रैक्टिस और एक सेटल्ड लाइफ। पर जब बेटी ने मिस वर्ल्ड का ताज पहनना चाहा, तो डॉक्टर मधु चोपड़ा ने अपना करियर पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि प्रियंका के सपने बड़े हैं और उन्हें एक ढाल की जरूरत है। बरेली से लेकर न्यूयॉर्क तक हर कॉन्ट्रैक्ट, हर फिल्म और हर मुश्किल मोड़ पर मधु जी सिर्फ एक माँ ही नहीं, एक मैनेजर बनकर भी खड़ी रही। उन्होंने दिखाया कि एक माँ की सबसे बड़ी कामयाबी उसके बच्चे की उड़ान होती है। प्रियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल आइकन है, पर उनका असली पावर हाउस उनकी मॉम है। उन माओं को सलाम जो हमारे सपनों के लिए अपने सपने पॉज कर देती हैं। Happy Mother's Day.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hello, I'm Neena Gupta.
5: Neena Gupta.
6: Radio.
4: सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
7: ऑलिव सुनो।

0: वक्त कतर ना स्पोर्ट्स को सिर्फ होस्ट नहीं करता, पूरा स्पोर्ट्स का कल्चर बिल्ड करता है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। 24th ऑफ मई को लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में वन रन फॉर ऑल ग्लोबल हाफ मैराथन होने जा रहा है और ऑनेस्टली स्केल काफी मैसिव है। 110 कंट्रीज, 200,000 से ज्यादा रनर्स जो है वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं और कतर में सिर्फ 2,500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है वो देखने वाले हो आप। मतलब रनिंग इवेंट से ज्यादा ग्लोबल यू नो मूवमेंट होने वाला है। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए नहीं है, इसमें किड्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, फैमिलीज हैं और सब पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन 400 मीटर रेस स्पेशली बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। फिटनेस जब फैमिली एक्टिविटी बन जाए ना तब लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है, रेस स्टार्ट होगी रात को 9 बजे, मतलब ऑफकोर्स सुबह नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये जो नाइट मैराथन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा फन होती हैं क्योंकि कतर वेदर को ध्यान में रखते हुए नाइट स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। और ऑनेस्टली लुसेल सर्किट पे रनिंग का जो वाइब है बहुत अलग होने वाला है। सो लाइट्स, एनर्जी, क्राउड, फैन जोन, सब कुछ होगा। एंड यू टेल मी कि आपका क्या प्लान है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

सो कल खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में सिर्फ फुटबॉल नहीं हुआ था, फुल सेलिब्रेशन हुआ था. 37,820 थी स्पेक्टेटर्स, पैक्ड स्टेडियम, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर और फिर अल गराफा का डोमिनेंट परफॉर्मेंस. 4-1 से विक्ट्री ली है अल साद की अगर मैं बात करूं. और ऑनेस्टली ये नॉर्मल विन नहीं था, दिस वॉज स्टेटमेंट फुटबॉल. सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो हैट्रिक था, मतलब फाइनल प्रेशर में इतना अमेजिंग लेजेंडरी एनर्जी और स्टेडियम का एटमॉस्फेयर तो ऐसा था जैसे फैंस लिटरली बहुत इन्जॉय कर रहे थे, जहाँ पर नॉन स्टॉप आवाज़ें थी. इसीलिए अमीर कप का जो इमोशन है वो अलग होता है. यहाँ फुटबॉल ना सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं होता, पूरी एक यू नो साल भर की मेमोरी जो है वो बन जाती है. और इस विन के साथ अल गराफा ने अपना 9th अमीर कप टाइटल जो है वो सिक्योर कर लिया. बैक टू बैक टाइटल्स, मतलब लेगेसी बिल्ड करना ईजी नहीं होता, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और ये कंसिस्टेंसी बहुत सारी टीम्स में है. सो इसी के साथ थोड़ी देर में हम एक किताब की भी बात करने वाले हैं जो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों की बात करती है. किताब का नाम है द लिटिल प्रिंस. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हिट रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।
0: रेडियो ओलिव।

0: मैं हूँ सारिका।
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

सो आज संडे है एंड एवरी डे यू नो आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू. संडे स्पेशली कतर में नया वीक स्टार्ट होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें, टारगेट्स, मीटिंग्स, हर चीज़ लाइनअप होती है. मेल्स, मतलब आप लगातार या तो मेल्स कर रहे होते हो या मेल्स पढ़ रहे होते हो, दोनों में से एक चीज़ तो होती है. सो आज यू नो इन सब टारगेट्स के बीच में बात करते हैं किताब की. आज की बुक ना बच्चों की लगती है लेकिन एक्चुअली एडल्ट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किताब का नाम है द लिटिल प्रिंस. सो ये दुनिया की मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक्स में से एक है और रीजन बहुत सिंपल है. ये बुक सिंपल वर्ड्स में डीप ट्रुथ बोलती है. स्टोरी एक लिटिल प्रिंस की है जो डिफरेंट प्लैनेट्स विजिट करता है और हर प्लैनेट पर वो कुछ लोगों की स्ट्रेंज आदतें ऑब्जर्व करता है, ईगो, ग्रीड, ऑब्सेशन विद नंबर्स. और फिर बुक एक पावरफुल लाइन बोलती है. सो बेसिकली कहती ये है किताब कि जो एसेंशियल है वो इनविजिबल है टू द आईज. प्यार, केयर, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती, बस फील होती है. और ऑनेस्टली मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज मदर्स डे भी है, सो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी मदर्स को किताबें पढ़ना पसंद है तो प्लीज़ उन्हें ये वाली किताब ज़रूर गिफ्ट कीजिएगा. ये बहुत ही अमेजिंग किताब है द लिटिल प्रिंस, और साथ ही साथ परफेक्टली कनेक्ट भी करती है क्योंकि मदर्स भी वही होती हैं. उनका लव ना विजिबल नहीं होता हर वक्त, लेकिन लाइफ के हर पार्ट में आपको फील ज़रूर होता है. You are listening Radio Olive. मैं हूँ मुस्कान. Stay tuned. Jio. Bindaas.

आज तो मैच होने वाला है चेन्नई वर्सेस लखनऊ के बीच में, पर अगर कल की बात करूं तो यस्टरडे वाज गुजरात वर्सेस राजस्थान। और इसमें अगर गुजरात की बात करूं तो कल गुजरात ने राजस्थान को 77 रन से हरा दिया था। अब सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये जो मैच चल रहा था, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैच, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में ही मैच होते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो राजस्थान को सपोर्ट भी करते हैं। पर अगर मैं बात करूँ इस टेबल की, तो इस टेबल में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। अब गुजरात ने इस सीज़न में लगातार चौथी जो जीत है वो ले ली है, और राजस्थान को लगातार दूसरे और ऑल ओवर पांचवें मैच में हार भी झेलनी पड़ी है। तो शुभमन गिल की टीम ने 11 में से 7 मैच जीते और 4 हारे हैं। टीम के पास 14 पॉइंट्स हैं और प्लेऑफ में पहुँचने के लिए उसे एक और जीत चाहिए। अगर राजस्थान की बात करूं तो इस सीज़न में 5वां मैच उन्होंने गवाया है और 11 मैचेस में से 12 पॉइंट उनके पास हैं और टीम अब भी 18th पॉइंट पर पहुंचकर प्लेऑफ में जगह बना सकती है। सो अब आज के मैच के हालचाल आपको बता दी थोड़ी देर में, पर आप मुझे बताइए कि इस वीकेंड आपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पर किया? घर पर मैचेस देख के, या फिर बाहर दोस्तों के साथ, या फिर कुछ नया ट्राई किया? बताओ मुझे। 3311063 पर यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टे ट्यून। Gio, good night.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Time check. Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor. Radio Olive par suniye great moms ki great stories.
2: सुनील छेत्री जब भी मैदान में गोल मारते हैं तो पूरा देश झूम उठता है। पर क्या आप जानते हैं उन्हें नेवर गिव अप का लेसन किसने दिया? उनकी मॉम आभा छेत्री ने। वो खुद एक इंटरनेशनल फुटबॉलर रही हैं। जब सुनील प्रैक्टिस के बाद थक कर घर आते थे तो आभा जी उन्हें सिर्फ लड्डू खिलाकर सुला नहीं देती थी, वो उनके गेम को क्रिटिक करती थी। वो जानती थी कि चैंपियन बनने के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है। वो सुनील की पहली कोच थी और आज भी उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक है। टू द मदर्स हु पुश अस टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, आप ही हमारी असली एमवीपी हो। हैप्पी मदर्स डे।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स Commercial Bank. Save and win.
5: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: आज दो मैचेस होने वाले हैं. सो पहला जो है वो होने वाला है चेन्नई और लखनऊ के बीच में दोपहर में, यानी कि थोड़ी देर में मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है. और दूसरा मैच होने वाला है शाम को बैंगलोर और मुंबई के बीच में. अब ये दोनों ही मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन शाम होते होते क्या होता है, हम फ्री हो जाते हैं. और बैंगलोर के एक्चुअली फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. व्हेनेवर आई आस्क हु इज़ योर फेवरेट टीम, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, तो सबसे पहले बैंगलोर का नाम लोग भेजते हैं. आप मुझे बताओ कि भाई टीम्स की तो बात ठीक है, बट एक प्लेयर होता है जो आपको लगता है कि यार ये प्लेयर ना इस टीम में होना चाहिए था, कौन है वो, नाम और नंबर है 3311063. सो आज के मैच की अगर मैं बात करूँ तो बैंगलोर के पास टेबल टॉप पर बनने का मौका है. टीम 10 में से 6 मैच जीतकर 12 पॉइंट्स के साथ फोर्थ नंबर पर है. और मैच जीतने पर बैंगलोर के पास 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और इतने ही पॉइंट्स हैदराबाद और गुजरात के पास भी हैं. सो बेटर नेट रन रेट जो है उसके लिए जीत के साथ बैंगलोर नंबर 1 पर पहुंच तो सकती है. सो वी विल सी शाम को कि क्या होता है, क्योंकि सारे लाइव अपडेट्स तो आपको मिलते रहेंगे यहीं पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. Cool song.

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

सो आज हर कोई ना सोशल मीडिया पर मदर्स डे की पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है. एवरीबॉडी इज पोस्टिंग देयर मदर्स फोटो. और मुझे आज के दिन एक बात तो रियलाइज हुई है कि मदर्स रेयरली ही कुछ बिग ड्रामेटिक लाइंस जो है वो बोलती हैं. उनका लव यूजुअली बहुत छोटे छोटे एक्शंस में होता है. एक्स्ट्रा फूड पैक कर देना, मैसेज कर देना कि पहुँच गए कि नहीं, फीवर में पूरी रात जागना आपके लिए, यू नो, केयर ना लाउड नहीं होती, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में केयर होती है. और एक फ़नी चीज़ बताऊं, बचपन में इरिटेटिंग लगने वाली चीज़ें बाद में ना बहुत बड़ी बड़ी यादें बन जाती हैं. मतलब मुझे हमेशा लगता था कि इतने सवाल आखिर क्यों पूछती है मम्मी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. अगर आप भी आज अपने मदर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो, देन यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 3311106 3. फटाफट से व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दो एंड आई विल श्योरली प्ले दैट. इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडियन मॉम की ना कुछ आदतें होती हैं. ठीक है, उन आदतों की हम बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. सो आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो बेसिकली इंडियन मॉम्स ऑनेस्टली एक यूनिवर्स होती हैं, पूरा शेयर्ड यूनिवर्स जिसे कहते हैं, क्योंकि हर घर में सेम डायलॉग्स मिलते हैं आपको. और बेसिकली वो आइकॉनिक डायलॉग्स क्या हैं, पंखा बंद कर दो, फ़ोन साइड में रख दो, पूरा दिन फ़ोन चलाते रहते हो, ठीक है, मैंने कहा था ना, हर चीज़ में मैंने कहा था ना, तो आपको सुनाई देगा ही देगा. और सबसे आइकॉनिक चीज़ें पता है आपको क्या है, यही सब है, मतलब उनके छोटे छोटे डायलॉग्स जो आपको हर जगह पर सुनाई देते हैं. सो बेसिकली यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फनी पार्ट है ना उसके पीछे वो है इमोशनल ट्रुथ. ठीक है, मदर्स कभी डिटेल्स नोटिस नहीं करती, मूड, हेल्थ, साइलेंस, इवन व्हेन वी डोंट इवन से एनीथिंग. माँ को एक्सप्लेनेशन कम और फीलिंग ज़्यादा समझ में आती है. और ऑनेस्टली एडल्ट लाइफ का बिगेस्ट कंफर्ट क्या होता है, किसी का जेन्युइन पूछना कि खाना खाया या नहीं खाया. आपके किसी को खाना खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी मदर को ज़रूर पड़ेगा. एंड आज यू नो व्हेन एवरीबॉडी इज़ पोस्टिंग देयर मदर्स पिक्चर, सो आई नो आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि हर किसी के ना एक डिफरेंट बॉन्ड होता है अपनी मदर के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. यू नो माएँ ना इक्वली प्यार करती हैं अपने बच्चों से. सो आप मुझे बताओ कि आज के दिन आप अपनी मदर के लिए क्या स्पेशल कर रहे हो. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour.

0: Time check. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor. Radio Alif par suniye great moms ki great stories.
1: हरियाणा का एक छोटा सा गांव और एक शरारती लड़का जिसका वजन थोड़ा ज्यादा था। लोग हंसते थे पर उनकी माँ निशी सिंह ने उनके अंदर कुछ और ही देखा। उन्होंने नीरज को स्टेडियम भेजा, सिर्फ प्यार से नहीं, एक जिद के साथ। जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में वो गोल्डन जैवलिन फेंका तो उस थ्रो में उनकी माँ की बरसों की तपस्या थी। निशी जी ने इंश्योर किया कि फेम और ग्लैमर नीरज का फोकस ना बिगाड़े। उन्होंने उसे सन ऑफ द सॉयल बनाए रखा। माँ की ममता कभी कभी सख्त होती है पर वही हमें गोल्ड तक ले जाती है। उन माओं के नाम जो हमें भीड़ में खोने नहीं देती। हैप्पी मदर्स डे। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
2: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो आजकल ना एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है विच इज इन्वेस्टमेंट. और ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने सबको थोड़ा सा फाइनेंस एक्सपर्ट बना दिया है. स्टॉक, गोल्ड, प्रॉपर्टी, आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, एवरीथिंग इज देयर. और हर जगह सेम डिस्कशन. लेकिन इंटरेस्टिंगली मिडल ईस्ट में, स्पेशली कतर और गल्फ कंट्रीज में, रियल स्टेट कॉन्वर्सेशंस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हैं. क्यों? क्योंकि लोग अब सिर्फ सैलरीज से सिक्योर फील नहीं करते. पीपल नाउ वॉन्ट्स एसेट्स यार, नॉट जस्ट इनकम. मतलब उनको लगता है कि यार कुछ तो बनाना पड़ेगा. और रियल स्टेट को ट्रेडिशनली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है बहुत ज़्यादा. लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी खरीदना और जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है उसे करना दोनों अलग चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग फैंसी इंटीरियर देख के ना इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या चेक करते हैं? लोकेशन, फ्यूचर डेवलपमेंट, नियर बाय ट्रांसपोर्ट और रेंटल डिमांड. बस यहीं पर चेंज हो जाता है. प्रॉपर्टी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली फ्यूचर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक्सपर्ट्स भी यही बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट ना थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन होना चाहिए. क्योंकि हम क्या करते हैं, व्यू अच्छा चाहिए, लॉबी लग्जरी लगनी चाहिए और बस एक्साइटमेंट में डिसीजन ले लेते हैं. एंड आई विल से कि अगर आप भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हो तो आप मुझे बताओ, या वो रियल स्टेट है या फिर गोल्ड या फिजिकल गोल्ड या ETF गोल्ड, किस तरह से मतलब आप बेसिकली इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. और आजकल ना मैं कुछ CAs को फॉलो कर रही हूँ, बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं यार. मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ तो एकदम सॉर्टेड है, पर वो सिर्फ उनकी बातों में सॉर्टेड लगती है. उनकी बातें जब आप सुनते हो तो लगता है कि बहुत आसान है, पर जब आप खुद से करने जाते हो तो बहुत डिफिकल्ट लगता है. बॉस, आप मुझे बताओ कि आपके पास भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको समझाते बहुत ईजीली हैं, पर लगता लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर, क्या पर ये बात है.

कल रात को अगर आपने सोचा कि भाई सोने से पहले 5-10 मिनट फोन चला लेते हैं और फिर फोन रखकर सो जाएंगे और फिर 2 घंटे तक स्क्रॉलिंग करते रहे हो, तो वेलकम टू द क्लब। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। आजकल स्लीप इशू का बिगेस्ट रीजन जो है वो स्ट्रेस नहीं है बल्कि स्क्रीन है। कल मैं सच बता रही हूँ, आई थॉट कि मैं आज अच्छे से सोऊंगी सो दैट जो नया वीक है संडे से मैं अच्छे से स्टार्ट कर पाऊँ, पर नहीं, मैं सो ही नहीं पाई। हम फिजिकली बेड पर होते हैं लेकिन ब्रेन अभी भी एक्टिव मोड पर होता है। रील्स, नोटिफिकेशन, रैंडम वीडियोज, मतलब मैं सर्च कर रही हूँ कि बेस्ट मूवीज कौन सी हैं, कल मैं क्या बात करने वाली हूँ, मतलब बस एक और स्क्रॉल करते करते कब टाइम निकल जाता है और सडनली क्लॉक बोलती है कि इट्स लाइक 2:30 AM। ओह, ये तो मतलब देखकर ऐसा शॉक लगता है ना। रिसर्च के अकॉर्डिंग फोन स्क्रीन से जो ब्लू लाइट्स आती है वो मेलाटोनिन हार्मोन को इफेक्ट करती है। सिंपल लैंग्वेज में ब्रेन को लगता है कि अभी भी डे टाइम है, इसलिए स्लीप लेट आती है, क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है।

मॉर्निंग टायर्ड फील होती है, जो मैं अभी कर रही हूँ। बट अभी तो देखो दिन हो ही गया, ऑलमोस्ट मेरे लंच का टाइम हो गया, और लंच करने के बाद तो मुझे आलस करना, मतलब ये तो मेरा काम ही है। इवन एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन को अवॉइड करना, डिम लाइट्स यूज़ करना, और फ़ोन बेड से थोड़ा सा दूर रखना, जो मुझसे तो नहीं हो पा रहा। आप मुझे बताओ कि आप कैसे कर रहे हो। 3311063 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो कब आपसे बातें करते करते जाने का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। और आज का लास्ट थॉट है कि कभी कभी लाइफ ना बहुत नॉइसी हो जाती है, डेडलाइंस, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्पेशली संडे को। आज संडे है और एवरी संडे वी हैव लॉट ऑफ मेल्स, नई नई चीज़ें जो मतलब हम सबके सर पर होती हैं, और उस नॉइस में हम एक चीज़ ना सर्च करते हैं विच इज़ पीस। लेकिन पीस हमेशा साइलेंस में नहीं मिलता। एक फैमिलियर वॉइस, एक केयरिंग मैसेज, या फिर किसी का सिंपल सा टेक केयर बोलना। होम ना शायद प्लेस नहीं होता, एक्चुअली फीलिंग होती है। और ऑनेस्टली जिस इंसान के साथ आप सेफ फील करो वो इंसान प्राइसलेस होता है। तो आज थोड़ा सा रेस्ट भी करना, थोड़ा सा स्लो भी हो जाना। आई नो वीकेंड के बाद काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरे साथ भी होता है, पर बॉस को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके सामने आप रहो एक्टिव, काम करो पूरा, पर लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखो। अभी के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त से लेकर, विद लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशंस, फैशन, बॉलीवुड, सब कुछ लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। रेडियो

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
2: इमेजिन एक 20 साल की लड़की जिसे उसके पति ने घर से निकाल दिया। वो प्रेग्नेंट थी, अकेली थी और उन्होंने एक काउशेड में अपनी बेटी को जन्म दिया। हालात इतने बुरे थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगनी पड़ती थी ताकि वो अपने बच्ची का पेट भर सके। वो चाहती तो सिर्फ अपने बेटी के लिए काम करती, मगर सिंधु ताई सपकल ने कुछ और ही चुना। उन्होंने हर उस अनाथ बच्चे को अपना लिया जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। तकरीबन 1200 बच्चों की माँ बनी वो और उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। सिंधु ताई ने सिखाया कि माँ बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, सिर्फ एक बड़ा दिल चाहिए। उन माओं को सलाम जिनका प्यार घर की चार दीवारी तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होता है। हैप्पी मदर्स डे।
3: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 May तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
6: नंबर 106.3
5: FM, Radio Olive, Jio Bindas.
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
8: Radio Olive, I'm number one.
9: Olive Music Marathon, एक घंटा non-stop back to back गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये ऑलिव रिचार्ज और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। आज एक डिफरेंट टाइम में, एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ, डिफरेंट कहानियों के साथ जो है पहुंच चुके हैं। वो कहना ना यार, कभी कभी आपको अपने रूटीन को थोड़ा स्पाइस अप करना चाहिए। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ऐसे विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में कहा था। मैं उसी चीज में भरोसा करता हूँ कि कभी कभी थोड़ा अपने रूटीन को हमें चेंज करना चाहिए, नई नई चीजें करनी चाहिए, ताकि वो एक फ्रेश माइंड जो है बना रहे। नहीं तो मोनोटोनी के इस चक्कर में इंसान जब गिर जाएगा तो फिर गिरता ही जाएगा। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे भाई, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मोनोटोनी से आपको निकालने का पूरा ठेका भाई ने ले रखा है, और भाई आ गया है तो बता ही जाएगा। और यार आज भाई के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे माँ के बारे में। आज तो मदर्स डे है भाई, मदर्स डे के दिन हमने सुबह से जो है स्टोरीज सुनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज जो है रेडियो ऑलिव में आपने सुनी होगी। ऐसा ही एक छोटा सा गेम जो है आज मदर्स के साथ भी हम खेलेंगे। वो क्या है वो गेम, कैसा है वो गेम, उस वक्त जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मगर उसके साथ साथ और भी खबरें जो है हम लेकर आए हैं, तो कुर्सी की पेटी जो है बांध लीजिए, यहाँ पे हम एक चिल उड़ान भरने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। रेडियो ऑलिव पर सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
1: हम सब जानते हैं माइकल जॉर्डन को द फ्लाइंग लेजेंड, मगर लेजेंड बनने से पहले एक 21 साल का लड़का जो नाइकी के साथ मीटिंग तक नहीं करना चाहता था, क्यों? बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तब उनकी माँ डेलोरेस जॉर्डन ने कहा, बेटा फ्लाइट पकड़ो और मेरी बात सुनो। वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, वो एक विजन था। माइकल की माँ ने इंसिस्ट किया कि हर जूते के सेल पर माइकल को एक परसेंटेज मिलना चाहिए। उन्होंने माइकल को सिखाया कि अपनी वैल्यू कैसे पहचानते। माँ सिर्फ हमारे लिए खाना नहीं बनाती, सिर्फ प्यार नहीं करती, वो हमारा फ्यूचर भी डिजाइन करती है। टुडे वी सेलिब्रेट द वुमन हु टॉट द गोट हाउ टू फ्लाई। दिस इज फॉर द फर्स्ट सीईओ ऑफ आवर लाइव्स। हैप्पी मदर्स डे।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक। 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
6: इन एसोसिएशन विद
7: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।
8: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
9: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, बात यह है कि हम सब जानते हैं कल जो था 54th एडिशन ऑफ अमीर कप का फाइनल था, जहाँ पे अल घराफा और अल सद एक दूसरे के आमने सामने आए और मैच देखने के लिए मैं गया था, मजा आ गया मुझे। मैं कुछ टाइम से जो है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम जो है विजिट करना चाहता था, अंदर से देखना चाहता था, बाहर से कई दफ़ा देखा है मगर अंदर जाके देखना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था। और जब मैं ऐसे धीरे धीरे जा रहा था तो जो गैलरी है ना उसके अंदर से जब तुम टनल से अंदर जो सीट्स की तरफ जाते हो तो काफ़ी नैरो एक पाथ है, वहाँ से एकदम से जो है एक वाइड सा वो खुल जाता है, तो मुझे इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही थी यार, क्योंकि मैंने देखा नीचे प्लेयर्स लाइंड अप थे, मार्शल बैंड लाइंड अप था और ओपनिंग सेरेमनी चल रहा था, इतना बढ़िया फीलिंग थी और पूरे लोग एकदम काफ़ी मज़े में थे। और इसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में जो था, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट थोड़ा थोड़ा जो है दोनों टीम्स इधर उधर अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे थे, मगर उसके बाद जिस तरीके से अल घराफा ने डोमिनेट किया फर्स्ट हाफ में, दो गोल्स उन्होंने स्कोर किए, अल सद ने कोशिश ज़रूर की, कई कुछ अच्छे प्ले जो है आए थे मगर वो उन्हें मटेरियलाइज नहीं कर पाए, गोल की तरफ जो है सो कन्वर्ट नहीं कर पाए, गोल कन्वर्जन जो है उतना नहीं हो पाया। और उसके बाद सेकेंड हाफ में जो है एक गोल जो है अल सद ने स्कोर किया था, उसके बावजूद भी फिर से दो गोल स्कोर किए अल घराफा ने और 4-1 से जो है उन्होंने मैच को अपने हाथ में लिया, फाइनल को अपने हाथ में लिया और अमीर कप के 54th एडिशन के ट्रॉफी को भी अपने हाथ में लिया और अपना टाइटल डिफेंड किया, क्योंकि पिछले साल भी यही जीते थे। और काफ़ी बढ़िया मैच था सही में, फैंस भी एंजॉय कर रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, हम सब एंजॉय कर रहे थे, तो कल का जो दिन था शाम का पूरा एंजॉयमेंट में गुजरा। स्टोरीज भी डाली थी हमने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी था, हमें रिप्लाई भी दिए थे, तो थैंक यू सो मच। और यही बात करते हुए ज़रा आगे बढ़ते हैं और जैसे हम गानों के उस पार आएंगे तो एक रिव्यू को लेकर आएंगे एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज़ के बारे में, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसका सेकेंड सीज़न भी निकल चुका है, तो अगर आपने फर्स्ट सीज़न नहीं देखा तो ये मौका है भाई देखने का। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 May तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो. In association with
2: Homes R Us, we complete your home.
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
0: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में हमने क्रिश मूवी का गाना सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे मैंने बोला था आपसे कि जब हम आएंगे गानों के उस पार तो एक रिव्यू लेकर आएंगे एक सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं, रिसेंटली मैंने देखा कि सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 जो है पहुंच चुका है और सीजन 2 के भी रिव्यूज काफी बढ़िया है। मगर जब मैंने थोड़ा ऐसे पूछताछ की बहुत से लोगों से पता चला कि सपने वर्सेस एवरीवन बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है। मैं छोटा सा उसका रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आप जरूर चेकआउट कीजिएगा सीरीज को और उसके बाद उसका सीजन 2 भी देखिएगा। सीजन 2 के भी काफी बढ़िया रिव्यूज है। सीजन 1 का रिव्यू मैं जरा दे देता हूँ। ये काफी रियलिस्टिक और एक इमोशनल सीरीज है जहां पे सपनों को चेस करने के पीछे जब इंसान लग जाता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब चीजों के बारे में बात की गई है। यंग जनरेशन के प्रेशर, एम्बिशन, फेलियर्स को बहुत ही नेचुरली यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। कैरेक्टर्स भी काफी रिलेटेबल लगेंगे हमें और उनकी एक्टिंग भी काफी जेन्युइन है। यहाँ पे एक इंसान का नाम मैं लेना चाहूंगा, अम्बरीश वर्मा। भाई हीरा है यार बंदा, हीरा, इतना बढ़िया बंदा। बहुत सारे लोगों ने शायद उसके कहीं ना कहीं शॉर्ट्स देखे होंगे, रील्स देखे होंगे। अगर आपने देखा है तो मैं यही बोलूंगा कि आप सीधा जाइए। अगर आपने सीरीज नहीं देखा है, उसके शॉर्ट्स देखे हैं, तो प्लीज डू चेक इट आउट। काफी बढ़िया है, काफी सॉलिड है, राइटिंग हो, एक्टिंग हो, बहुत ही मस्त। और उसके साथ साथ स्पेशली जिस नोट पे वो एंड करता है, वो सीरीज जो एंड करता है, मजा आ जाता है। जो तसल्ली मिलती है दिल को, एकदम अलग लेवल का। और सीजन 2 भी जो है निकल चुका है, काफी अच्छे रिव्यूज उसके भी आ रहे हैं। मगर पहले आप सीजन 1 देखिए, उसके बाद हम सीजन 2 के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गाना प्ले करते हैं नौटंकी साला मूवी का, साबा आजाद ब्रूनो की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। जियो बिंदास।

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3
0: जियो बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: बस इतनी सी बात है, टेंशन लेने की क्या बात है। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मुझे एक मैसेज आया था इदरीस भाई का। उन्होंने जो है मैसेज किया, बोला कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। बोले कि हाउ आर यू, आज मॉर्निंग में नहीं आए और मिस यू इन द मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आज का जो टाइम है मेरा ये वाला है, और मैंने भी आप सबको मिस किया, और आपके फोटोज को मैं चेकआउट कर रहा था। उन्होंने मुझे अभी एक फ़ोटो भेजा, और अभी भेज के एक फ़ोटो जो है यहाँ पे सेंड किया है, और बोला है कि वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ऑन एयर। जी बहुत ही प्यारा फ़ोटो, मुझे लगता है आपने ये दोहा पोर्ट के पास से लिया, काफ़ी अच्छा फ़ोटो, मज़ा आ गया देख के। मगर मैं इदरीस भाई एक बात पूछूँ यार, इतनी गर्मी है बाहर, आप इस गर्मी में कैसे मैनेज कर पा रहे हो, मुझे ये जानना है। फोटो तो काफी बढ़िया लिया यार, मतलब मैं तो फैन हूं आपके फोटोग्राफी का। उसके साथ साथ यहां पे एक और चीज जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बात यह है कि दोहा जो है ग्लोबल हाफ मैराथन होस्ट करने वाला है। मुस्कान ने जो है अपने शो में इसके बारे में छोटी सी बात बताई थी, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। तो कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ के अंडर आता है, और 24 मई को लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में वन रन फॉर ऑल हाफ मैराथन जो है ऑर्गेनाइज करने वाला है। इस इवेंट में 2500+ रनर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें वुमेन, किड्स और सीनियर सिटीजन्स सब इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये मैराथन जो है ग्लोबल इवेंट है, जहाँ पे 110+ से जो है कंट्री से लोग आने वाले हैं, और उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड 2 लाख से ज्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस साल 6 रेस कैटेगरीज हैं, 400 मीटर किड्स रेस, 1 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर फैमिली रन, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन। और इवेंट का जो फन जोन है वो शाम 4:30 से स्टार्ट हो जाएगा, जबकि रेसेस जो है वो रात 9 बजे बिगिन होगी और 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, तो ये है बहुत ही बढ़िया ग्लोबल हाफ मैराथन के बारे में जो बात मुझे मिली थी। अभी फिलहाल यहाँ पे काम करते हैं, फ्रेश सॉन्ग प्ले करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब वक्त हो गया है असर की अजान का.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
2: एक कामयाब डॉक्टर, एक बिजी प्रैक्टिस और एक सेटल्ड लाइफ। पर जब बेटी ने मिस वर्ल्ड का ताज पहनना चाहा, तो डॉक्टर मधु चोपड़ा ने अपना करियर पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि प्रियंका के सपने बड़े हैं और उन्हें एक ढाल की जरूरत है। बरेली से लेकर न्यूयॉर्क तक हर कॉन्ट्रैक्ट, हर फिल्म और हर मुश्किल मोड़ पर मधु जी सिर्फ एक माँ ही नहीं, एक मैनेजर बनकर भी खड़ी रही। उन्होंने दिखाया कि एक माँ की सबसे बड़ी कामयाबी उसके बच्चे की उड़ान होती है। प्रियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल आइकन है, पर उनका असली पावर हाउस उनकी मॉम है। उन माओं को सलाम जो हमारे सपनों के लिए अपने सपने पॉज कर देती हैं। हैप्पी मदर्स डे।
3: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो ऑलिव बोलो बिंदास।
6: Are us. We complete your home.
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई, स्टेशन क्लॉक में अभी 3:22 हो रहे हैं और चलिए यहाँ पे जो है हम मौसम का हाल देख लेते हैं। और अभी का जो टेम्परेचर है, क्या बताएं यार, हम मतलब चकित हो गया मैं जैसे ही मैंने देखा टेम्परेचर। 38 डिग्री सेल्सियस जो अभी का टेम्परेचर है, और आज का लोवेस्ट टेम्परेचर जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। और हवा बह रही है 28 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी? ना मुन्ना ना, ये हवा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। मगर हमारे वेदर डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते ही बोल दिया था कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो है चलेंगे, इस हफ्ते की शुरुआत में भी चलेंगे, तेज हवाएं चलेंगी, किसी किसी एरिया में जो है डस्ट भी उड़ सकता है, तो विजिबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जहां से भी ड्राइव कर रहे हैं हवा अगर ज्यादा तेज है तो ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट्स प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हल्का याग्निक और सोनू निगम की आवाज में मेरे यार की शादी है मूवी का गाना हमने सुना। सच बताया तो मेरे यारों की शादी हो रही है, मैं ही बचाऊं क्योंकि मैं मना कर रहा हूं। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी खबर जो है हम आपको देना चाहेंगे, एक बहुत ही बढ़िया जो है अपडेट हेल्थ मिनिस्ट्री के साइड से जो आया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक वर्कशॉप जो है रखा था ताकि इन्फेक्शन सर्वेलेंस को जो है एनहांस कर पाए। इसमें अगर हम डिटेल्स बताएं तो ये है कि कतर के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एसोसिएटेड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल सर्वेलेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। MOPH ने एक नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जिसमें अराउंड 100 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स से आए थे। और वर्कशॉप में जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन, डेटा कलेक्शन मेथड्स, मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स जैसे सर्जिकल इन्फेक्शन, इन सब के बारे में बात की गई। हैंड हाइजीन कंप्लायंस और डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन पर फोकस किया गया। एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिक सेशंस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और रियल लाइफ सिमुलेशंस के थ्रू पार्टिसिपेंट्स को इन्फेक्शन कंट्रोल और सर्वेलेंस के टेक्निक्स जो हैं सिखाए। और MOPH का ये एम है कि कतर में सेफर और सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम जो है बिल्ड करें जहां पेशेंट सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी हो। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है एक बहुत ही स्पेशल गाना आपके लिए आने वाला है जो हम अभी के अभी प्ले करने वाले हैं, एक बहुत ही प्यारी मूवी से बहुत ही प्यारा गाना। भाई जैसे ही गाना शुरू होगा अपन लोग सब मिल के धनुष का वो स्टेप करेंगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बस मन में वो स्टेप कीजिएगा, रियलिटी में मत कीजिएगा, मत करना क्योंकि वही अच्छा रहता है ना। तो फिलहाल यहाँ पे शिराज उपल की आवाज में रांझाना मूवी का टाइटल ट्रैक सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सदैव। तो भाई स्टेशन क्लॉक में अभी 3:52 हो रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हम जानते हैं गर्मी का मौसम है, मगर बीच में जाने का मन करे तो फिर जाना ही तो पड़ेगा ना। तो भाई जैसे जैसे समर आ रहा है, कतर का जो कोस्ट लाइन है काफी एक रिफ्रेशिंग तरीका जो है हमें दे रहा है इस कंट्री को एक्सपीरियंस करने के लिए। और मैं यहाँ पे 10 बीचेस के बारे में बात करना चाहूँगा जो आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नामी बीच। नामी बीच जो है कतर के कोस्ट लाइन में एक लेटेस्ट एडिशन है जो दोहा में ही है और काफ़ी क्यूरेटेड एक बीच फ्रंट एक्सपीरियंस जो है ये प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कबानाज हैं, लैंडस्केप्ड एरियाज हैं और डाइनिंग ऑप्शंस भी हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक डेडिकेटेड लेडीज ओनली जोन भी है ताकि एक प्राइवेट और कंफर्टेबल सेटिंग जो है फीमेल विजिटर्स को मिल पाए। और उसके साथ साथ है 974 बीच, जो स्टेडियम 974 के पास ही है। ये एक कंटेम्प्रेरी बीच है जहाँ पे लीजर है और काफ़ी लाइवली एटमॉस्फेयर भी है। वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि जेट स्कीइंग, कायाकिंग, ये सब यहाँ पे होते हैं। उसके साथ साथ बीच वॉलीबॉल, फुटबॉल, ऐसे डेडिकेटेड एक्टिविटी जोन्स भी यहाँ पे हैं ताकि एक डायनामिक और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस जो है लोगों को मिल पाए। फिर है वेस्ट बे बीच, जो सेंट्रल दोहा में है, वेस्ट बे में। और यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़िया एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जहाँ पे सिटी स्काईलाइन का व्यू भी मिलेगा। उसके साथ साथ ये जो है एक पेट फ्रेंडली बीच भी है। यहाँ पे आप रिलैक्स्ड वॉक्स के लिए, स्विमिंग के लिए और ऐसे ही समुंदर के किनारे थोड़ी देर बैठने के लिए आराम से आके बैठ सकते हैं। फिर आता है सी लाइन बीच, जो मिसाइद में है। सी लाइन बीच जो है एक लॉन्ग स्टैंडिंग फेवरेट है जिन्हें जनरेशंस जो है पसंद करती हैं, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट और सी का यूनिक ब्लेंड मिलता है। तो विजिटर्स जो हैं यहाँ पे डून बैशिंग एंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ऑल डे बीच एंड डेजर्ट सेटिंग में जो है पूरा दिन बढ़िया तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। फिर है इनलैंड सी खोरल अदेद में, और ये एक रेयर लैंडस्केप है जहाँ पे डेजर्ट ड्यून्स जो है सी को मीट करते हैं। और ये भी यूनेस्को के एक लिस्ट में है नेचुरल रिजर्व में। और उसके साथ साथ विजिटर्स जो है डेजर्ट एडवेंचर और स्विमिंग दोनों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कतर का एक काफ़ी इमर्सिव डेजर्ट टू सी एडवेंचर डेस्टिनेशन में से एक बनाता है इनलैंड सी को। फिर है फुवेरत बीच, अलमरूना बीच, सिमाइस्मा बीच, जिक्रीत बीच, दुखान बीच, इतने सारे बीचेस हैं यहाँ पे कि आप भाई एक एक दिन जाइए, चिल कीजिए, आराम से अपने फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वीकेंड्स में एंजॉय कर सकते हैं। बट देखिए गर्मी के टाइम पे अगर आप जा रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना तो बाहर निकलना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं धीरे धीरे कतर में स्टार्ट होने वाली है, समर रिलेटेड एक्टिविटीज स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध के रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जर्नी है हम भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में ओ रोमियो मूवी का टाइटल ट्रैक प्ले करके। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: गच्छति।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक छोटा सा जो है सरप्राइज मैं बताना चाहूंगा। जब शो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि भाई आज मदर्स डे है, कुछ स्पेशल करना चाहता हूं, तो मैंने एक स्पेशल चीज की है। स्पेशल चीज ये की है कि मैंने कुछ माओं को कॉल किया है, उनसे बात की, उनसे एक सवाल पूछा है। तो थोड़ी देर में जो है हम कुछ कॉल्स जो है यहाँ पे सुनेंगे, कुछ कॉन्वर्जेशन यहाँ पे सुनेंगे, कुछ मदर्स के साथ जो मेरा कॉन्वर्जेशन वो आप सुनेंगे, और उसमें मेरी मम्मी भी शामिल है। तो यूजुअली जब भी हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और कई दफ़ा मैंने सोचा कि यार अपने मम्मी को भी ज़रा इसमें शामिल करूँ, कभी किया नहीं, तो सोचा इस बार कर लेते हैं। बट इसमें सिर्फ मेरी मम्मी ही नहीं है, और भी लोग हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे मातृभूमि मूवी का गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में गानों के उस पार जब हम आएंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्वर्जेशन सुनेंगे, एक सवाल जो है हम करेंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारी मदर्स जो है वो कितनी तेज है। तो फिलहाल यहाँ पे गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. रेडियो ऑलिव पर सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
1: सुनील छेत्री जब भी मैदान में गोल मारते हैं तो पूरा देश झूम उठता है। पर क्या आप जानते हैं उन्हें नेवर गिव अप का लेसन किसने दिया? उनकी मॉम आभा छेत्री ने। वो खुद एक इंटरनेशनल फुटबॉलर रही हैं। जब सुनील प्रैक्टिस के बाद थक कर घर आते थे तो आभा जी उन्हें सिर्फ लड्डू खिलाकर सुला नहीं देती थी, वो उनके गेम को क्रिटिक करती थी। वो जानती थी कि चैंपियन बनने के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है। वो सुनील की पहली कोच थी और आज भी उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक है। टू द मदर्स हु पुश अस टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, आप ही हमारी असली एमवीपी हो। हैप्पी मदर्स डे।
2: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: This is
8: Vani Bhanushali.
9: Hey, this is
10: Ileana
9: D'Cruz.
11: This is me, Ritik Roshan.
12: Hi, I'm Alia Bhatt.
13: Hi, main hu Vivek Anand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
14: In association with
15: Homes Are Us, we complete your home.
16: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. तो जैसे कि मैंने बोला कि यार आज मदर्स डे है और मैंने कुछ माओं को कॉल किया था, उनसे बात की थी. तो सबसे पहले हम जरा बातचीत सुनते हैं तनीषा की मम्मी के साथ जो मैंने बात की थी. तो चलिए शुरू करते हैं.
1: हेलो
0: राधिका जी.
1: हेलो
0: राधिका जी.
1: हाँ जी.
0: आपसे एक सवाल पूछना है हमें.
1: जी पूछिए.
0: सवाल पूछने से पहले आपको हैप्पी मदर्स डे.
1: थैंक यू सो मच.
0: एक माँ होने के नाते माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य.
1: थैंक यू जी.
0: मैं पूछ रहा था एक माँ होने के नाते माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है.
1: अपनी बेटी को और अपने बच्चों को प्यार करना.
0: अपनी बेटी के दोस्त को 10,000 रुपए भेजना.
1: बस इतना सा.
0: नहीं मैं मजाक कर रहा था. मैं एक सवाल पूछने के लिए कॉल किया था आपको.
1: मांगते तो दे देते हैं आपसे.
0: अरे आंटी फिर कुछ नहीं, हंसते हंसते जायदाद दे दो बस, कले चलेगा अपने लिए.
1: अरे माँ का प्यार मिल गया मतलब जायदाद मिल गई.
0: बस काफी है, और क्या चाहिए मुझे. अब वो कागजात में भी साइन कर दो थोड़े. प्यार काफी है मेरे लिए. मैं एक छोटा सा सवाल पूछने के लिए आया था आपसे. सवाल के लिए तैयार हैं आप?
1: हाँ जी.
0: एक ऐसी वस्तु जो हम खरीदते हैं खाने के लिए मगर खाते नहीं है, क्या है वो?
1: एक वस्तु हम खरीदते हैं लेकिन हम खाने की लेकिन खाते नहीं है, उसका मतलब. आपके क्वेश्चन बहुत बड़े अजीब होते हैं वैसे कतर वालों के.
0: क्या करे मैं, संगत का असर बोल सकते हैं.
1: थोड़ा वो हो जाता है डिफिकल्ट, लेकिन उसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं प्राइस वगैरह.
0: नहीं इस बार आपने सही जवाब दे दिया तो मैं अपने घर चले जाऊंगा, और आपने नहीं दिया तो भी मैं अपने घर चले.
1: अरे तो आप घर नहीं जाना, इंदौर आना. इंदौर
0: आएंगे. चलो ठीक है, सही जवाब दे दिया तो इंदौर आएंगे.
1: आंटी के पास आना.
0: बिल्कुल आएंगे. बिल्कुल
1: आंटी के पास आना.
0: बिल्कुल आएंगे हम. सवाल का जवाब दीजिए.
1: जवाब खा मतलब एक खा, वो बाजार से जाके खाने की चीज खरीदते हैं और वो हम खाते नहीं है.
0: हाँ खाने के लिए खरीदते हैं हम उसे, मगर उसे नहीं खाते.
1: अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. आंसर भी आप बता दो.
0: ठीक है मैं बता रहे. तो आप हार मान गए, पास कर दिया आपने.
1: नहीं मैं हार तो नहीं मानूंगी कभी भी.
0: अरे ये क्या बात होती है.
1: जिस बेटी की माँ हूँ कभी हार नहीं मानती हो.
0: ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, इसके लिए तो हम आपको सलाम ठोकते हैं. मगर हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप पास कर रहे हो सवाल का जवाब. सोचिए सोचिए, हम तो जब वक्त दे रहे हैं आपको, सोचिए आराम से.
1: प्लेट.
0: अरे आपकी बेटी ने आपको मैसेज किया?
1: हाँ.
0: मेरे सामने बैठ के ये
1: नहीं, मेरी बेटी ने बिल्कुल मैसेज नहीं किया. नहीं नहीं नहीं प्लेट, मेरी बेटी का मैसेज देखा ही नहीं मैंने अभी.
0: अरे
1: प्लेट प्लेट की हम बाजार से प्लेट खरीद के लाके लेकिन खाते नहीं.
0: आपकी बेटी यहाँ पे बैठ के हंस रही है, उसकी आवाज नहीं निकल रही हंसते हंसते. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू और हैप्पी मदर्स डे एक और बार.
1: थैंक यू.
0: टेक केयर आंटी. तो राधिका जी से बात की हमने, तनीषा की मम्मी से. मैंने एक सवाल पूछा था तो यही सवाल जो है मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा है. उनका जवाब क्या है जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
2: कूल सॉन्ग
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: Ankai ke saath CNG ho ya fuel type buses 64 seater ya compact 26 seater paiye behtar mileage aur maximum comfort Carmel group ke saath ab safar without suffer

0: भाई इस मूवी ने जो ट्रेंड सेट किया था ना यार इंडिया में, मतलब क्या बताऊं मैं, बाल लंबे करना, बॉडी बनाना, बाइक स्पेशली हायाबुसा का जो एक क्रेज चला उसके बाद, अलग ही लेवल का था यार, अलग ही लेवल का। और धूम मूवी जो है चाइल्डहुड के लिए भी बहुत स्पेशल है मेरे, क्योंकि इसकी सीडी लेके देखते थे हम बार बार। कुछ ऐसे मूवीज हैं जो हम बार बार रिविजिट करते थे, उनमें से एक मूवी है धूम, तो बचपन की याद आ गई यार। बचपन की याद से याद आया, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि भाई हमने जो है माता श्री को कॉल किया था अपने और बात की थी उनसे, तो चलिए उनसे भी एक सवाल पूछा था हमने, उनसे भी सेम ही सवाल पूछा था, देखते हैं कि मेरी मम्मी का रिएक्शन क्या था। तो उस कॉल की ओर जाते हैं। हेलो मैडम देवी स्नायर।
1: हाँ जी।
0: हैप्पी मदर्स डे।
1: बोलिए सुदेव।
0: आज आपसे एक सवाल पूछने के लिए कॉल किया है मैंने अपने ऑफिस में बैठ के।
1: अच्छा जी, सवाल कर लीजिए।
0: सवाल का सही जवाब दिया तो आपका बेटा छुट्टी पे आएगा।
1: हाँ।
0: सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं जरूर छुट्टी में आऊंगा।
1: हाँ, तभी भी आपका बेटा छुट्टी पे।
0: ठीक है, तो सवाल सुन लो ध्यान से। ठीक है, सवाल है, एक ऐसी चीज जो हम खाने के लिए लेते हैं मगर खाते नहीं है।
1: खाने के लिए देते हैं मगर खाते नहीं है।
0: हाँ, खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते नहीं है।
1: वो क्या है, मुझे नहीं मालूम,
0: सोच के देखो यार।
1: खाने के लिए खरीद रहे हैं मगर खाते नहीं है।
0: खाते नहीं है,
1: है?
0: हाँ सही तो जवाब दिया तो
1: खाता होगा।
0: अच्छा बोलो कि नहीं आता, मुझे नहीं आता, बताओ, पास कर दिया, बोलो।
1: पास कर दिया
0: ना। प्लेट। प्लेट लेते हैं हम खाने के लिए, प्लेट नहीं खाते मगर।
1: ओ वाला, मैंने तो खाना ही सोच रहे थे।
0: कोई बात नहीं, इसी खुशी में 500 रुपए भेज देना अकाउंट में।
1: अच्छा जी।
0: नहीं 500 मत भेजना, मजाक कर रहा हूँ, कमाने वाला बेटा है अभी, ऐसे थोड़ा ना, 5000 भेज देना। ठीक है।
1: ठीक है,
0: देखो दे सकते हो, दे दो, मैं मना नहीं करूंगा, बड़ा बेटा माँ से पैसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। तो चलो थैंक यू सो मच।
1: मैं सिर्फ खाने के ऊपर ध्यान दे रहे थे।
0: हाँ कोई बात नहीं, ये मेरी निंजा टेक्निक थी आपसे पैसे निकालने की।
1: अच्छा,
0: कोई नहीं, चलो थैंक यू। तो मेरी माताश्री से मैंने उसके बाद बोला कि पैसे मत भेजना, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने अपनी मम्मी से पैसे मांगे, मैं मजाक में मांग रहा था, मम्मी से मैंने पैसे नहीं लिए, बट एनीवे मजा आया, मम्मी को भी इस सवाल का जवाब जो है नहीं पता था। बट अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, एक और माताश्री को कॉल करना है, मगर वो मेरी माताश्री नहीं है, वो कशिशवा की माताश्री है, उनको भी, उनके पास भी बात करेंगे हम। अभी फिलहाल यहाँ पे हद कौर की आवाज में सुनते हैं, साढ़े चार बज गए एक्चुअली, और फालतू मूवी का गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है, इस गाने के साथ एंजॉय करते हैं, वाइब करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: कमाल खान की आवाज में किस्मत का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो यहां पे चलिए वक्त आ चुका है कशिश की माता श्री की बात के बारे में सुनने का। तो मैंने उन्हें पहले कॉल लगाया, सुनते हैं क्या हुआ।
1: हेलो
0: देवी और सजनों, आज हमारे साथ अभी जुड़ रही हैं मेहरुनिसा जी। मेहरुनिसा जी, आपको बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे। कैसे हैं आप बताइए, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया, आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं कौन बोल रहा हूँ, ये सवाल जो है आपने बिल्कुल सही पूछा है, मगर ये सवाल का जवाब देने से पहले मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। आज मदर्स डे है, आज हम माओ को बुला के एक सवाल पूछ रहे हैं। कट कर दिया। मेहरुनिसा जी ने मेरा कॉल कट कर दिया, गाइस कट कर दिया, मगर हम भी हार मानने वालों में से नहीं है, हम फिर से कॉल करेंगे।
1: हेलो,
0: आपने बात सुनने से पहले कॉल कट कर दिया मेहरुनिसा जी, दिल दुखा दिया आपने हमारा।
1: अरे अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं वो ऑलिव रेडियो आएगा तो मैं काटूंगी नहीं, पर इंटरनेशनल कॉल ऐसे लिखा हुआ आएगा।
0: अच्छा,
1: तो थोड़ा सा कुछ
0: आपको पता है, आपने कॉल कट कर दिया, बेचारी आपकी बेटी रो रही है वहाँ खड़े होके, वो कह रही है माँ ने मेरा कॉल कट कर दिया। तो चलिए आपकी स्मार्टनेस का एक टेस्ट हो जाए, एक सवाल लेकर आया हूँ मैं, मगर सवाल पूछने से पहले हैप्पी मदर्स डे।
1: थैंक यू।
0: तो सवाल ये है कि एक ऐसी वस्तु जो हम खरीदते हैं खाने के लिए मगर उसे खाते नहीं है।
1: खरीदते हैं खाने के लिए?
0: हाँ, एक ऐसी वस्तु जिसको हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं है। क्या?
1: प्लेट।
0: एक बार में जवाब दे दिया, वाओ। ये कैसे हुआ? अब मुझे अब जानना है कि कैसे आपको ये, या तो आपसे किसी ने सवाल पहले पूछ रखा है।
1: थोड़ी सा स्मार्ट रहना जरूरी है ना।
0: बिल्कुल, बात तो सही। ओके मैम,
2: थैंक यू। मदर्स डे मैम, बाय।
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
0: टेक केयर।
1: गिफ्ट नहीं मिल रहा है कतर से?
0: अरे आपकी बेटी को भिजवा देंगे थोड़ी देर में, बताओ आप। इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या चाहिए।
1: हाँ ये बस हाँ,
2: बस ये मत बोलना, मैं वही रखो, हमें शांति मिल रही है यहाँ पे।
0: सच तो है मगर कोई बात नहीं है। चलो आंटी, थैंक यू,
2: बाय।
0: तो मदर्स डे था, सोचा थोड़ा कुछ अलग किया जाए, बस ऐसे मन किया। बट यहाँ जैसे जैसे हम कॉल खत्म करके ऐसे बैठे हैं, यहाँ पे हमारे निकलने का भी वक्त आ चुका है, 4:50 जो हैं हो रहे हैं, और धीरे धीरे टाटा बाय करके मैं जरा निकलना चाहूंगा। थोड़ी देर में यहाँ पे सिमरन आएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, आपकी इवनिंग को जबरदस्त बनाने के लिए। तो भाई खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिए, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे कई ज्यादा प्यार जो है सिमरन को दीजिए। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका जो बचा हुआ कुछ दिन है बहुत ही बढ़िया जाए, एकदम अलग लेवल पे जाए, जाएगा जरूर जाएगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि कल इसी वक्त हम मिलते हैं और कहते हैं तब तक के लिए जियो बिंदास।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार, आई एम सो परफेक्ट और आप भी हो यार परफेक्ट। अपने आप को किसी से कम नहीं समझने का, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखने का, सब्र रखने का, खुश रहने का, ये सारी बातें हम सबकी माँ जो है वो हमको सिखाती है, राइट। और यही चीजें हमको तब नहीं समझ लगती जब ये माँ सिखा रही होती है, लेकिन जब एडल्टिंग हो जाती है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमको समझ लगता है कि माँ की दी हुई ये दुआएं, माँ की कही हुई ये बातें कितनी ज्यादा जो है वो मैटर करती है, राइट। मैं क्या चीज सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। मदर्स डे आज, अगर आपको नहीं भी पता था, सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो पता लग जाता है। रेडियो ऑलिव जो है वो आपको हर दिन के बारे में बताता है अगर कोई दिन जो है वो खास होता है, लेकिन माँ का कोई दिन नहीं होता है, हर दिन ही माँ से खास होता है। स्पेशली जो है जब आप अपनी माँ को कॉल करके विश कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं, अच्छा अच्छा होता है यार वो टाइम। चार घंटे अपने ये करेंगे हम इसके बारे में भी बात, लेकिन आप बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन। और वीकेंड खत्म हो चुका है, राइट। 3311063 पर आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस जो है

बाकी जोरों शोरों से स्वागत तो सुदेव ने मेरा कर ही दिया था, मतलब इतना खुश हो गया मैं स्टूडियो में एंट्री लिया भाई, इतनी इज्जत इतना प्यार, ओह माय गॉड।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
2: हरियाणा का एक छोटा सा गांव और एक शरारती लड़का जिसका वजन थोड़ा ज्यादा था। लोग हंसते थे पर उनकी माँ निशि सिंह ने उनके अंदर कुछ और ही देखा। उन्होंने नीरज को स्टेडियम भेजा सिर्फ प्यार से नहीं, एक जिद के साथ। जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में वो गोल्डन जैवलिन फेंका तो उस थ्रो में उनकी माँ की बरसों की तपस्या थी। निशि जी ने इंश्योर किया कि फेम और ग्लैमर नीरज का फोकस ना बिगाड़े। उन्होंने उसे सन ऑफ द सॉयल बनाए रखा। माँ की ममता कभी कभी सख्त होती है पर वही हमें गोल्ड तक ले जाती है। उन माओ के नाम जो हमें भीड़ में खोने नहीं देती। हैप्पी मदर्स डे।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: सत श्री अकाल जी, मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम जियो बिंदास।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के
1: साथ जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us, we complete your home.

आओ जानम समझा करो उसे अभी गाना सुन रहे हैं इस टाइम पे जितनी भी मम्मियां मुझे सुन रही हैं फिर मम्मी बनने वाली हैं सबको आपको हैप्पी मदर्स डे है ना। मैं एक चीज ऐसे सोच रही थी कि जब हम ऐसे छोटे होते हैं ना हमको मम्मी जो भी कहती है ऐसे कुछ परवाह नहीं होती है, हर पता है कि कुछ भी होगा तो मम्मी जो है वो मिली जाएगी, मम्मी अपने आप कर देगी, मम्मी अपने आप सभी सारी चीजें जो है संभाल लेगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मम्मी पापा की एज जो है वो बढ़ती है, सो जैसे ही हम लोग अपना यू नो पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो जाती है, जॉब करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, घर से थोड़ा सा दूर रहना स्टार्ट करते हैं, फिर कैसे हमारी जो है वो हमारी मम्मी के लिए जो है वो हमारी सांसें चलने लगती हैं, कैसे कैसे हम मम्मी की परवाह करने लगते हैं। पहले मम्मी हमें फ़ोन करती रहती थी और हम ठीक है यार उठा लेंगे, ये है वो है, उतना परवाह नहीं होती थी। अब अगर आप इस टाइम पे जब हम घर से दूर रह रहे हैं ऐसे टाइम पे आपने अपनी मम्मी को फोन किया और मम्मी ने फोन नहीं उठाया, भाई साहब क्या ऊपर नीचे हम मम्मी को लेक्चर सुना देते हैं राइट। एंड फिर उसके बाद एक चीज़ जो है वो साथ साथ चलती है, जब हम बड़े होते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, करियर बना रहे होते हैं, लाइफ आगे बढ़ रही होती है, तो ऐसे टाइम पे फिर टेंशन होने लगती है। मम्मी को ज़रा सी भी खांसी आपने अगर फ़ोन पे सुन ली या ऐसा पता लग गया कि मम्मी को फीवर हुआ है, हमारी कैसे जान निकलती है ना। फिर धीरे धीरे हम सबको ये एहसास होता है यार जब हम छोटे थे हम बीमार पड़ते थे मम्मी पे भी तो सेम ही बीतती होगी है ना। फिर हम सुनते थे मम्मी बोलती थी दवाई खा लेना, हम बोलते खा लेंगे यार, किसी छुट जाते थे डॉक्टर के पास, नहीं जाना यार। अब जब मम्मी अगर ऐसे बीमार पड़ जाए और मम्मी बोले कि मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना, तो मतलब क्या हम वो चीज़ सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुन सकते। सो या ये चीज़ जो है घूम फिर के हमारे ऊपर भी वैसी आती है, क्योंकि अगर हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। सो या जितनी भी मम्मियाँ हैं पापा भी हैं ऑफकोर्स यार, आप सबको सलाम है यार, सभी के मम्मी पापा जो है एकदम मतलब हेल्दी रहे और लाइफ में बढ़िया रहे। अब मम्मी की बात हो रही है तो आई लव दिस ट्रैक यार, सभी मम्मियों के लिए गाना डेडिकेट करके हैप्पी मदर्स डे। अपनी मम्मा के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं जो कि आप कभी नहीं कहते अपनी मम्मा को, अपनी मम्मी के नाम के साथ वॉइस नोट रिकॉर्ड करो और भेजो मुझे 3311106 पर।

0: You are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please you.
1: Simran ji, I love you so kilo.
0: You are very good and we never miss your show.
2: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सुनने में मजा आता है. माशाल्लाह सो एनर्जीफुल वॉइस है, सुन के टेंशन दूर हो जाती है, मजा आता है.
3: सिमरन जी, आई लव यू अ लॉट. सिमरन के साथ
4: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete.

तुम की आवाज श्रेया घोषाल के साथ आपके साथ हो। मदर जी है आज, उसकी भी वाइफ थोड़ी सी साथ साथ साथ में रखेंगे। ऐसे ही मम्मी के बारे में थोड़ी सी बात ही करेंगे। क्या मम्मी देखो घर का सारा काम करती है, सबको संभाल लेती है, क्या कभी आप जब थोड़ी सी भी तारीफ करें ना, कोई उनकी थोड़ी सी भी तारीफ करे, उनके चेहरे पे ऐसी स्माइल तो होती है, लेकिन ऐसा उनके चेहरे पे ऐसा होता है कि मतलब लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो करना ही है, ये अगर हम माँ हैं तो हमको करना ही पड़ेगा। मतलब वो खुश बहुत ज़्यादा हो जाती है जब उनकी थोड़ी सी भी कोई खाने की या किसी चीज़ की तारीफ कर दे। नॉर्मली जो है मम्मियों को ज़्यादा तारीफ मिलती ही नहीं है, क्योंकि हम सब अपने अपनी मम्मियों को जो है वो फॉर ग्रांटेड लेके बैठे रहते हैं, लाइक ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो करेंगे। नहीं भाई, मतलब सोचो ना यार, मतलब मैं अभी सोचती हूँ कि अब 2022 में मैंने मेरी माँ को खोया था, राइट। अब क्या होता है कि उसके बाद आपकी यादें जाती हैं, आप फिर सारी चीजें सोचते हो यार आपने कभी इतना ज्यादा है ना, मम्मी जब करती थी तो आप इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे। लेकिन मैंने मुझे याद है कि जब मैं कमाने लगी, जब मैं काम करने लगी, तब मैंने मेरी माँ को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। एंड बहुत सारे प्लान्स भी आपके होते हैं, तो कभी कभी जिंदगी को कुछ और ही जो है वो मंजूर होता है, फिर वो प्लान्स बीच में रह जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, जिंदगी जीवाइए यार उनको, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सब किया है यार। और अभी फिलहाल क्या कर रही है टीम मुंबई और बेंगलुरु की? मुंबई अभी खेल रही है, 5.4 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 51, 3 विकेट का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। आप अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ भी कह दीजिए, 3311063 पर आप वॉइस नोट भेज सकते हैं मुझे। चलो फिर एंजॉय करो, जियो बिंदास आ रही हूँ बस थोड़ी देर में, लेकिन आने वाले गानों में

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
0: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes Are Us. We complete.

करती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: जी सुनियो कितना दिखी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ और मदर्स डे है और जब भी मम्मी का टॉपिक होता है ना भाई साहब इमोशनल जो है ना वो हम सब हो जाते हैं मतलब अपने आप को कोई रोक नहीं पाता क्योंकि मम्मी चीज ही ऐसी है हमेशा ये चीज जंग चलती रहती है कि मम्मी से ज्यादा प्यार है कि पापा से ज्यादा प्यार है बात मम्मी पे आके रुकती है यार।
1: hey सिमरन गुड इवनिंग विमलेश बोल रहा हूँ और मैं आपको 5-6 सालों से लगभग सुन रहा हूँ और जहाँ तक मुझे याद है कि आप जब भी अपने माँ के बारे में बात करती थी पता चलता था कि आप उनसे कितने करीब हो और मेरा भी मैं अपनी माँ के साथ बहुत बहुत सॉलिड कनेक्शन है मतलब मेरी फ्रेंड है वो मैं हमेशा रियलाइज करता हूँ कि उनके ना रहने पे मेरे लिए कितना मुश्किल होगा तो आज स्पेशल मौका है और इस पे दो लाइनें हैं एक सॉन्ग है जो मैं उनके लिए गाना चाहता हूँ और वो ये है।

0: आई, जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई।
1: क्या बात है यार, अब आपने इतना प्यारा गाना गा दिया, ऊपर से मदर्स डे है, डेफिनेटली गाना मैं प्ले करने वाले, लेकिन पापा अगर बुरा मान गए तो
2: वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा।
1: कोई बात नहीं, जागने दो यार। इस गाने को सुन के मैं भी बहुत बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, स्पेशली जब आपकी माँ आपसे बहुत बहुत बहुत बहुत दूर होती है ना, और वो आपको सीधा ऊपर से देख रही होती है, पर आप नहीं देख पाते यार, आप महसूस कर पाते हो बस। हैप्पी मदर्स डे। अपनी मम्मा के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलो यार, 3311063 पर बताओ कुछ। 3, 2, 1 एंड गो।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

अगर आप भी अपनी मम्मा के लिए कुछ बोलना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, मम्मी को कोई गाना गा के जो डेडिकेट करते हैं आप हमेशा, वो भी कर सकते हैं 3311063 पर। एंड उसके साथ साथ मैच जो है वो भी चल रहा है, बातों बातों में मैं वो ना भूल जाऊं, मुंबई और बेंगलुरु का मैच चल रहा है। मुंबई अभी खेल रही है 12.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद, 12.3 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 110 और 4 विकेट जो है ऑलरेडी मुंबई के जा चुके हैं। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो जरा मुझे बताओ यार।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Olive 106.3 Radio Olive Gio Bindas
2: Radio Olive par suniye great moms ki great stories.
3: Imagine एक 20 साल की लड़की जिसे उसके पति ने घर से निकाल दिया. वो प्रेग्नेंट थी, अकेली थी, और उन्होंने एक काउशेड में अपनी बेटी को जन्म दिया. हालात इतने बुरे थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगनी पड़ती थी ताकि वो अपने बच्ची का पेट भर सके. वो चाहती तो सिर्फ अपने बेटी के लिए काम करती, मगर सिंधु ताई सपकल ने कुछ और ही चुना. उन्होंने हर उस अनाथ बच्चे को अपना लिया जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था. तकरीबन 1200 बच्चों की माँ बनी वो, और उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया. सिंधु ताई ने सिखाया कि माँ बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, सिर्फ एक बड़ा दिल चाहिए. उन माओं को सलाम जिनका प्यार घर की चार दीवारी तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होता है. हैप्पी Mother's Day.
4: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
6: अंकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
7: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु. डीजे सुकेतु, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम. जियो जियो बिंदास.
8: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
9: Radio Olive, our number one.
10: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
11: सिमरन के साथ
12: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
13: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
14: Supported by Homes Are Us, we complete your home.

0: श्रेया घोषाल बीपरा की आवाज इश्क का बुखार। किस मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं।
1: टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय दानातल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाके अलखोर।

0: यहाँ कोई झूठी मूठी बात नहीं है, जितनी भी लेडीज अभी मुझे सुन रही हैं, देखो यार लड़कियां ना उनको फैशन का डिजाइनर क्लोथ्स का कलेक्शन जो है इसका बहुत ज्यादा शौक होता है, तो ऐसे टाइम पे मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपको जरूर बता दूं। अल हज्म मॉल में ये जो ज़िनाथा, आई होप मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, ज़िनाथा एग्जीबिशन जो है वो लगी हुई है और ये 13th में जो है इसका लास्ट डे है। सो मेक श्योर कि अगर आप अबायाज और जलाबियाज एंड एसेसरीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ये सारी चीज़ें खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली एक बार इस अल हज्म मॉल में विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको लग्जरी ब्रांड्स वगैरह डिजाइनर से भी मिलने का मौका मिलेगा जिनकी कलेक्शन आप जो है वो देख सकते हैं। सो या इसकी टाइमिंग जो है वो सैटरडे टू वेंसडे दोपहर 12 से लेकर रात के 10 बजे तक है, एंड फ्राइडे जो है, अभी फ्राइडे तो आएगा नहीं क्योंकि ये खत्म हो जाएगी, बट या अभी जो है टाइमिंग दोपहर 12 से लेकर रात के 10 बजे तक जो है आप यहां पे जा सकते हैं एंड कलेक्शन जो है वो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वैसे भी ईद जो है वो आने वाली है तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। सिमरन कौर आपके साथ थी, बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

बिल्कुल पानी का ग्लास थोड़ा ऊंचा रखो क्योंकि हाइड्रेट करना खुद को बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमको नहीं पता लगता, हम एसीयू में बैठे रहते हैं। हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, जैसे म्यूजिक जरूरी है।

मैशअप होने वाला है आप लोगों के लिए थोड़ी ही देर में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए जो कि आप मुझे भेज रहे हो। एंड उसके साथ साथ जो है वो मैं आपको एक और चीज जो है वो बता दूं, जैसे हम ईद की बात कर रहे थे, ईद अल अदा जो है वो आने वाली है। पर्ल आइलैंड, जवान आइलैंड जो है उसके लिए, जो आपकी पूरी फैमिली के लिए, वहां पर पूरा माहौल जो है वो सेट किया गया है ईद के लिए। सो ईद का माहौल जो है वो किस तरह से कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। 26 मई से लेके 30 मई तक वहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, यू नो, आपके बच्चों के लिए, जैसे कि बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल फेस पेंटिंग है ना, आर्ट, एंड बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप यू नो, कतारी मजलिस एंड फेस्टिव गैदरिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। सो या बाकी की जितनी भी डिटेल हमको जब भी मिल जाएगी उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आप इस ईद पे क्या करने वाले हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। यार इस बार तो ट्रैवल कर रहे होगे आप लोग, राइट? सिमरन गौरी आपके साथ, जी हो बिंदास।

0: You are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please.
1: Simran ji, I love you so kilo.
0: You are very good and we never miss your show.
2: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सुनने में मजा आता है. माशाल्लाह सो एनर्जी फुल वॉइस है, सुन के टेंशन दूर हो जाती है, मजा आता है.
3: सिमरन जी आई लव यू अ लॉट. सिमरन के
4: साथ कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
6: द बिग Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
7: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
9: आरजे सिमरन के साथ.
10: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Supported by Homes R Us, we complete your home.

0: 1:42 स्टूडियो की घड़ी पहुंच गई है. लेट्स डू दैट. एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं, चलो फिर डिकोड करते हैं. एक जेंजी डेटिंग टर्म है जिसका नाम है डिल्यूजनशिप. डिल्यूजनशिप वो होती है कि एक इमेजिन्ड वन साइडेड रिलेशनशिप, फैंटेसी बेस्ड ऑन फैंटेसी, सो उसको बोलते हैं डिल्यूजनशिप. यानी कि एक तरीके में मिलेनियन के स्टाइल में बोला जाए, एक तरफा प्यार. एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, सिर्फ मेरा हक है उस पे. मैं भूल जाती हूँ यार किस तरह से बोलते हैं. शाहरुख खान का अलग लेवल है यार, याद है ना आपको ऐ दिल है मुश्किल में वो ये डायलॉग बोलते हैं रणवीर सिंह के सामने, और फिर वो थोड़ा सा ऐसा जेलस हो जाते हैं रणबीर कपूर के सामने फिर वो थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं यार. 6:52 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं. सिमरन कौर आपके साथ है, मैं जो अविनाश है.
1: Song of the Hour. Yeah.

गानों में गुलाबी रंग कितना यूज किया जाता है ना, आंखों के लिए भी गुलाबी रंग यार। गुलाबी सावरिया, गुलाबी दुपट्टा, गुलाबी ये, गुलाबी वो। 7:05 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और ये टाइम कहता है तुमसे मिलने की तमन्ना है।

0: नंबर गाने चल रहे हैं और शो किसका चल रहा है, सिमरन कौर का चल रहा है। थोड़ी इज्जत, थोड़ा प्यार सब चाहिए मुझे आपसे, फुल ऑन अटेंशन, और 9 बजे तक चाहिए अटेंशन, ठीक है। अभी फिलहाल मैच की तरफ थोड़ी सी अटेंशन देते हैं। मुंबई और बेंगलुरु का मैच चल रहा है और मुंबई अपने 20 ओवर जो है कंप्लीट कर चुकी है। 167 रन का टारगेट दिया है बेंगलुरु के लिए। बेंगलुरु की टीम अब आ चुकी है स्टेडियम में, मैं देख रही हूँ अभी थोड़ी देर में जो है वो अपनी बैटिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही मैच स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट देने की पूरी पूरी पूरी पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये कर्तव्य मैं निभाऊंगी। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई है यार। और बताओ क्या कर रहे हो यार, इन शॉर्ट आपसे यही पूछना चाहती हूँ, हमारे से कनेक्ट करो आप, ठीक है। सुनते रहो रेडियो वाले को, कहते रहो जी अमिंदास एंड खुश रहो यार, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हो।
1: Score update. Presented by
2: Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global ke site, Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai Buy 3 get 1 free offer on all products 15 Mei tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
2: हरियाणा का एक छोटा सा गांव और एक शरारती लड़का जिसका वजन थोड़ा ज्यादा था। लोग हंसते थे पर उनकी माँ निशि सिंह ने उनके अंदर कुछ और ही देखा। उन्होंने नीरज को स्टेडियम भेजा, सिर्फ प्यार से नहीं, एक जिद के साथ। जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में वो गोल्डन जैवलिन फेंका तो उस थ्रो में उनकी माँ की बरसों की तपस्या थी। निशि जी ने इंश्योर किया कि फेम और ग्लैमर नीरज का फोकस ना बिगाड़े। उन्होंने उसे सन ऑफ द सॉयल बनाए रखा। माँ की ममता कभी कभी सख्त होती है पर वही हमें गोल्ड तक ले जाती है। उन माओं के नाम जो हमें भीड़ में खोने नहीं देती। हैप्पी मदर्स डे।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
6: Jonita Gandhi.
7: Radio Olive, I'm the number one.
5: You are listening to me on Radio Olive.
6: Radio Olive.
5: Gio Bindas.
7: Radio Olive, I'm the number one.
8: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
9: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
10: आरजे सिमरन के साथ।
11: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Supported by Homes R Us, we complete your

0: एसपी वाला सुब्रमण्यम की आवाज। साजन फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। कभी कभी ऐसे निकले होते किसी से मिलने के लिए, रास्ते में लड़ाई हो जाती है। कभी आपकी लाइफ में क्या आपने ये चीज जो है वो फील की है कि आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, जिसमें आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसे टाइम में जब आपका मिलने का प्लान बनता है और आप फ्लाइट लेके या ट्रेन लेके या फिर गाड़ी में इतनी दूर ड्राइव करके जाते हो और रास्ते में कोई ना कोई ऐसी भसड़ हो जाती है कि आप दोनों की लड़ाई हो जाती है और सामने वाला आपको ब्लॉक कर देता है, तो फिर कैसी सिचुएशन रहती होगी? बंदा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। सिचुएशन आपके साथ कभी हुई है तो बताओ यार 3311063 पर। ओके
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: इंस्टाग्राम पे मोहम्मद बहुत सारी वीडियोस देख रही हैं जिसमें वो इंस्टाग्राम के वेरिफिकेशन सेल्फी के बारे में बात करें। काफी ज्यादा ट्रेंडिंग सिक्योरिटी फीचर है जो कि आपको अकाउंट हैक होने से, लॉकआउट होने से जो है वो आपको हेल्प करता है। तो किस तरह से आप ये वेरिफिकेशन सेल्फी जो है वो कर सकते हैं, रुक जाओ मैं अपना फोन उठाती हूँ और उसमें आप भी इंस्टाग्राम पे जाइए और मैं भी इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं आपको बेटर बता पाऊंगी। तो जहां पे आपकी प्रोफाइल है वहां पर आपको लेफ्ट साइड में वो 3-4 लाइनें डंडे दिख रहे होंगे ना, समझ रहे हो? तो आपको जाना है, अरे यार ओपन हो जाए यार, हाँ अकाउंट सेंटर में फिर जाना है। अकाउंट सेंटर में जाने के बाद आपको दिखने वाला है उसमें पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन में दिखेगा वेरिफिकेशन सेल्फी। सो वेरिफिकेशन सेल्फी में जाके वहां पे आपका अकाउंट आपको दिखेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको सेव अ वेरिफिकेशन सेल्फी फॉर प्रोफाइल रिकवरी, वो आपको दिखने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नीचे क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे वो आपको एक कोड जो है वो आपके जीमेल पे जो है भेजेगा, वो कोड आपने ऐड करना है उसमें, ठीक है। कोड ऐड करने के बाद आपको अपनी सेल्फी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी उसमें। मैंने 2-3 बार एक्चुअली ये ट्राई किया है आज ये करने का, बट समहाउ ये वेरिफिकेशन जो है वो ओके नहीं हो पा रही है, बट फिर भी आई विल ट्राई। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर हो जाएगा यार।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Supported by Homes R Us, we complete your home.

हाँ जी लता जी की आवाज सोनू निगम के साथ से थोड़ा मुड़ जाए हो जाएगा जितने भी बॉलीवुड लवर हैं उन सबको ये पता है कि व्हाट इज कभी खुशी कभी गम 7:31 32 सेकंड।

0: रहता है।
1: उसको देख के तो चैन आए ना, मौसम को देख के आज थोड़ा सा चैन आ रहा है।
2: मौसम
1: मौसम जो है वो थोड़ा सा माइल्ड लग रहा है मेरे को। 31 डिग्री सेल्सियस दो टेम्परेचर है अभी का, लेकिन फील्स लाइक 27 डिग्री सेल्सियस है। वो इसलिए है क्योंकि विंड जो है वो 19 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है, जो कि माहौल को थोड़ा सा नरम बना रही है। ह्यूमिडिटी जो है वो 21% है। आज का मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। सो या वेदर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे अच्छे से वेदर में आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कड़क वड़क पी रहे हो या फिर जिम के लिए जा रहे हो या फिर ओवरथिंकिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बताओ यार। 3311106 3 4

0: हाँ जी मेघा जी सोने होंगे दादी की हाल चाल सत सिमरन कौर है आपके साथ अगर प्यार मिल भी जाए चाहे वो सच्चा प्यार हो लेकिन भरोसा नहीं होता यार
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: लाइफ में ना अलग अलग फेज होते हैं एक फेज ऐसा भी होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं कॉलेज स्कूल वाला टाइम होता है और कभी कभी बहुत जल्दी अर्ली जॉब वाला भी टाइम होता है तब मतलब इतनी ज्यादा अकल आई नहीं होती है और हम नए नए मार्केट में हम उतरे होते हैं राइट सो लोगों से नया नया मिलना जो है वो चालू होता है कभी कभी ये क्या होता है कि जब भी आपसे कोई मिलता है आपसे कोई अच्छी बातें करता है और ये बड़ी बड़ी बातें करता है आप सारी बात पर भरोसा कर लेते हो है ना उसके बाद एक टाइम जो है वो बीतता है फिर आपको धीरे धीरे आपकी जब एडल्टिंग होती है एकदम सही तरीके से फिर आपको समझ लगता है अरे जो दिख रहा है वो चीज है नहीं है बातों के अलावा और इस चीज में और इस इंसान में कुछ रखा नहीं है चाहे वो बात दोस्ती की हो चाहे प्यार की हो हम भरोसा कर लेते हैं फिर जब भरोसा कर करके आपको ठोकरे और लाते हैं सब लगती हैं फिर एक लेवल आता है कि फिर आपसे कोई वैसी बातें करता है आपको भरोसा दिलाने की कोशिश करता है और ये बड़ी बड़ी छोड़ता है फिर आपको लगता है ऐसे वाला जो है वो सीन आता है पर ऐसे टाइम पे एक दुखद घटना हमारे साथ ये भी हो जाती है कि कोई वाकई में सच्चे में ही आपसे जो है वो कुछ नहीं चाह रहा है आपका अच्छा चाह रहा है आपके साथ दोस्ती करना चाह रहा है आपके साथ जिंदगी स्पेंड करना चाह रहा है लेकिन आपने अपनी जिंदगी में बादाम नहीं धोखे खा लिए हैं इतने ज्यादा कि आपको भरोसा ही नहीं होता है सो या एक तरीके से ये सही भी है कि हम गलत हाथों में अब ना जाएं पहले जो हो गया सो लाइफ में हो गया लेकिन एक ये भी होता है कि यार वाकई में सही तो नहीं बोल रहा था या सही तो नहीं बोल रही थी सो या आप कौन से फेज पे हो यार ऐसे तो मेरा तो यार

0: I love you, Sokil.
1: You are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please us.
2: Simranji, I love you, Sokil.
1: You are very good and we never miss your show.
3: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सुनने में मजा आता है. माशाल्लाह सो एनर्जीफुल वॉइस है, सुन के टेंशन दूर हो जाती है, मजा आता है.
0: सिमरन जी, आई लव यू अ लॉट.

0: आज तो यार एक ही याद है, वो है माँ की याद, क्योंकि आज है मदर्स डे। और
1: लड़िया भी तेरे नाल प्यार माए, तू ही मेरा रब बनी, तू ही मेरा यार माए।
0: बस थोड़ी देर में ये गाना आप सुनने वाले हैं और हम मैच की तरफ देखते हैं। मुंबई और बेंगलुरु का मैच चल रहा है। मुंबई ने पहले खेलते हुए 167 रन का टारगेट दिया है। बेंगलुरु खेल रही है, विकेट जो है और साथ नहीं दे रहे हैं इनका, बट फिर भी बड़े इजीली जो है स्कोर बन सकता है। 11.1 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 84, 3 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं, 53 बॉल्स पे 83 रन्स जो है वो बनाने हैं। सुया, इसी घंटे नेम गेम भी होने वाला है, तो तैयार रहिएगा अपना नाम लिख के, जैसे ही मैं आपको बोलूँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
2: Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul pass. Madar Kadeem, Vakra, VFS Global K side, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3, get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai. Buy 3, get 1 free offer on all products 15 Mei tak. This offer is available on all 19 branches.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
4: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर सुनिए Great Moms की Great Stories.
2: सुनील छेत्री जब भी मैदान में गोल मारते हैं तो पूरा देश झूम उठता है. पर क्या आप जानते हैं उन्हें नेवर गिव अप का लेसन किसने दिया? उनकी मॉम आभा छेत्री ने. वो खुद एक इंटरनेशनल फुटबॉलर रही हैं. जब सुनील प्रैक्टिस के बाद थक कर घर आते थे तो आभा जी उन्हें सिर्फ लड्डू खिलाकर सुला नहीं देती थी, वो उनके गेम को क्रिटिक करती थी. वो जानती थी कि चैंपियन बनने के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है. वो सुनील की पहली कोच थी और आज भी उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक है. टू द मदर्स हु पुश अस टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, आप ही हमारी असली MVP हो. हैप्पी मदर्स डे. गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
4: हाय, दिस इज बिपाशा बासु.
5: हाय, आई एम राजकुमार राव.
6: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
7: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
9: सिमरन के साथ
10: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Supported by Homes Are Us, we complete

0: किसी को याद रखो ना रखो, मुझे जरूर याद रखो, क्योंकि देखो यार 4 घंटे हर रोज होते हैं आप लोगों के साथ, 8:17 स्टूडियो की घड़ी पे।
1: Alright,
0: so एक नंबर गानों के साथ।
2: तुम्हारी अदा खूबसूरत, तेरा इश्क भी है सजा खूबसूरत।

0: हाय क्या खूबसूरत गाना है यार। लव आजकल टू के सारे गाने बड़े खूबसूरत है और जिस तरह से हमारा रेडियो खूबसूरत है, बड़े मस्त वाले गाने चलते हैं, आप सारे शोज को पसंद करते हैं, उसी तरह से हमारे सोशल मीडिया से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि कतर में जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको सबसे पहले जो है वो अपडेट कर सकें। लेकिन एक चीज़ की और ध्यान है कि अगर आप हमारे रेडियो का जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, सोशल मीडिया पे कोई भी अपडेट पढ़ रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन टोटल ऑथेंटिक होती है। हम सेकेंड थॉट वाली इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको नहीं देते, जो भी ओरिजिनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको हमारे पेज पर मिलेगी। एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है ऑफकोर्स है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ टोटल इन्फोटेनमेंट है ना। सो कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कुछ फनी वायरल वीडियोस भी क्रिएट करने की। बहुत सारे कॉन्टेंट्स हैं जो कि हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे होते हैं एंड यूट्यूब का जब हमारा कोई ये जो चैनल है वहां पर हम पॉडकास्ट इंटरव्यूज जो है वो भी आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। सो इन शॉर्ट आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया को भी उतना ही प्यार दीजिए और आपके फोन में रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन होनी चाहिए ताकि जब भी आपका मन करे 24/7 म्यूजिक ऑन है, आप सुन लीजिए बॉलीवुड का।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

मैं जांच के रहनी है क्योंकि मैं नानी हूँ। तू भी ना लिया कर, तू भी जांच देगा। क्विकली अब मैं आप सबके नाम लेने वाली हूँ, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे हर रोज सुनते हो यार, अब मेरा थैंक यू कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, आपको क्विकली अपना नाम लिख के भेजना है मुझे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है। चलिए मैं आप लोगों का नाम लेने वाली हूँ। एहसान, नागेश, अताबुल, जैन, इदरीस, रकीब, गुज्जर, हाफिज, विमलेश, रेशु, नारायण, यामथापा, इमरान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हाफिज जी थैंक यू सो मच। 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजना है। सूर्य जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद हाफिज जी, सामी जी, अबरार जी, सब्या जी, नजीमुल्ला जी, शाहीन जी, आरती जी, आमिर जी, जुल्फिकार जी, मजीबुल जी, इमरान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अभी अभी थैंक यू मत लिखिए, मैं मौका दूंगी आपको थैंक यू लिखने का। फुरकान अली जी, इमाद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मरीना जी, क्रिस जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नारायण जी थैंक यू सो मच, इशक जी थैंक यू सो मच, अर्थ थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अपना नाम लिखिए, इमेजिनरी नेम मत लिखिए। शाहबाज गुल जी, सुबोध जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। ही करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका नाम ही तो है नहीं है। ओके, नीतू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मोहम्मद जी थैंक यू सो मच, उमर जी थैंक यू सो मच, श्रवण कुमार जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अब जिन जिन लोगों के, इमाद जी थैंक यू सो मच, अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए आप थैंक यू लिख सकते हैं, और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी ज़रूर बना के भेजना जो कि आप बहुत यूज़ करते हो अपनी चैट्स के दौरान। और जिनके नाम रह गए तो आपने जल्दी नहीं लिखा दोस्त, कल को ले लेंगे आपका नाम। और ये मेरा फेवरेट गाना, 3, 2, 1 and

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ.
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes R Us. We compete.

जी सोनियों की तरह की हाल चाल सत श्रीकाल सिमरन कौरी आपके साथ। मुंबई और बेंगलुरु का मैच चल रहा था। बेंगलुरु ने मुंबई ने पहले खेलते हुए 167 रन का टारगेट दिया और बेंगलुरु का आज दिन नहीं था। और बेंगलुरु जो है वो अभी मैच मुझे लग रहा है कि नहीं इतना समझ नहीं लग रहा है कि हो भी सकता है कि कुछ हो जाए, क्योंकि 15 बॉल है, 15 बॉल पे उनको 24 रन जो है वो जीतने के लिए चाहिए। सो या क्या लग रहा है आपको, हो भी सकता है यार मामला, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैच में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। 6 विकेट इन्होंने ऑलरेडी जा चुके हैं और मैं यहाँ से गलती मारने वाली हूँ। मैं कुछ बोल दूँ और उसके बाद कुछ और हो जाए, मैच कैसा रहा वो आपको कल जो है वो पता लगने वाला है। शोज को ध्यान से सुनिए, हम सारी अपडेट्स। 13 बॉलों पर 17 रन जीतने के लिए चाहिए पॉसिबिलिटी। तो ये क्या मैं देख रही हूँ, ये सिक्सर लगाया क्या अभी? बस मामला ऑलमोस्ट सेट है यार। 13 बॉल अभी 18 रन जो है वो चाहिए। सो इन्हीं के हाथ में मैच जो है वो आते हुए लग रहा है। सो या मैं कल आपको शाम को 5 बजे मिलूंगी जबरदस्त इवनिंग्स में। और जाने से पहले शो का ये गाना आखिरी वाला चमक छोरिया सेनायन वाला ऑल टाइम फेवरेट तमाशा फिल्म से। बस खाते बिंदे रो, ऐश कर दे रो, चेहरे दे वड्डे वाली स्माइल, लोगों को किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर किलो। रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये

0: You are the only person who can play our voice on the radio and we can listen at and we can very much please.
1: Simran ji, I love you so kilo.
0: You are very good and we never miss your show.
2: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सुनने में मजा आता है. माशाल्लाह सो एनर्जी फुल वॉइस है, सुन के टेंशन दूर हो जाती है, मजा आता है.
3: सिमरन जी आई लव यू अ लॉट. सिमरन के
4: साथ फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
5: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.

भाई आज मदद जी है, बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आज अपने अपनी माँ को क्या दिया? कोई कहेगा कि योगा मैट दी, कोई कहेगा कि आज मैंने बाहर स्पा का सेशन बुक कर दिया था मामा के लिए, तो कोई कहेगा कि मैंने मामा को किचन के बेस्ट यूजफुल यूटेंसिल्स गिफ्ट किए थे। पर क्या किसी ने माँ के साथ आज वक्त गिफ्ट किया उन्हें? Hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। आज मदर्स डे स्पेशल है, वैसे तो हर दिन माँ से है, लेकिन स्टिल आज का दिन भाई पूरी दुनिया में मनाया जाता है माँ के लिए। तो आज मैं भी जानना चाह रहा था कौन कौन माएँ हैं जो मुझे दुनिया के किस किस कोने से सुन रही हैं। तो आज इंस्टाग्राम पे थोड़े अलग तरह से मैसेज आएंगे, हाय आकाश बेटा करके लिखिएगा और उसके बाद बताइएगा जरूर मुझे आपकी लाइफ में जब आप मदरहुड में एंटर किए, आपके लिए कौन सी वो चीज़ आपको सबसे स्पेशल फील कराती है। मतलब आपको लगा कि उस दिन लिटरली आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, जहाँ आप एक वाइफ से सीधा मदर बन गई, और वो एक जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, उसने आपको क्या स्पेशल फील कराया? शेयर कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, रेडियो ऑल एफ का पेज है, फॉलो करके इस बेटे के साथ एक फॉलोअर बढ़ा दीजिए और इस रिश्ते को और गहरा कर लीजिए। हाय आरजे आकाश लिख दीजिएगा इनबॉक्स में और बाकी रेडियो ऑल एफ का पेज मिल ही जाएगा। फिलहाल एक प्यारे से गाने के साथ शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल इवनिंग की, सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे मोमेंट। जियो बिंदास।

0: ये है मिड नाइट लाउंज रेडियो ऑलिव पर, सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
1: एक कामयाब डॉक्टर, एक बिजी प्रैक्टिस और एक सेटल्ड लाइफ। पर जब बेटी ने मिस वर्ल्ड का ताज पहनना चाहा, तो डॉक्टर मधु चोपड़ा ने अपना करियर पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि प्रियंका के सपने बड़े हैं और उन्हें एक ढाल की जरूरत है। बरेली से लेकर न्यूयॉर्क तक हर कॉन्ट्रैक्ट, हर फिल्म और हर मुश्किल मोड़ पर मधु जी सिर्फ एक माँ ही नहीं, एक मैनेजर बनकर भी खड़ी रही। उन्होंने दिखाया कि एक माँ की सबसे बड़ी कामयाबी उसके बच्चे की उड़ान होती है। प्रियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल आइकन है, पर उनका असली पावर हाउस उनकी मॉम है। उन माओं को सलाम जो हमारे सपनों के लिए अपने सपने पॉज कर देती हैं। हैप्पी मदर्स डे। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

0: मदर्स डे है और आज बहुत सारे लोग अपने अपने स्टेटस पे माओं के साथ बढ़िया सी सेल्फी लेकर क्लिक कर और एक प्यारा सा गाना लगाकर अपनी माँ को डेडिकेट कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि आज माँ के साथ वक्त बिताया।
1: रील वाली रियल कहानी।
0: हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज। देखो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज रील्स कहीं ना कहीं आपको दिखाएगी कि आप अपनी माँ से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और ऑब्वियसली ये रील्स काफी नहीं होती है दिखाने के लिए, बट सच्चाई ये है कि माँ को रील से ज्यादा, रील तो चलो आपने दुनिया को दिखाने के लिए कर दी, लेकिन माँ को अगर कुछ गिफ्ट करना चाहते हो ना, तो वक्त करना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा था कि आज माँ के साथ भी कोई रील बनाई होगी, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके रिश्तेदारी घेरी कर लो और मुझे अपनी माँ के साथ वाली रील भेजो। भाई, जिस रील पे माँ का साथ हो, तो उस रील को मेरी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम कैसे छोड़ सकती है, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, आज मेरे को मैसेज में शेयर कीजिए वो रील जो आपने अपनी मामा के साथ बनाई है। मैं उसको जाकर लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, और ज्यादा पसंद आई ना तो अपने स्टेटस पे भी शेयर करूंगा। अभी फिलहाल आप मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे अपनी मम्मा के साथ वाली रील, और बाकी अब रियलिटी में एक बहुत प्यारा सा गाना चला रहा हूँ, इस इवनिंग को चार चांद लगा देगा। जी बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। ये है मिडनाइट लव।

एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ से दूर हो जाता है तो वो हॉस्टल लाइफ नहीं जीने जाता, वो एक्चुअली कितनी चीज़ें फेस करता है ना, अपनी माँ के बिना वाली लाइफ, माँ बाप की वैल्यू समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। शायद इसलिए डे बोर्डिंग में पेरेंट्स डाल देते हैं कि ले बेटा तेरे को बचपन से ही ले बेटा स्वाद आ गया।

flashback. Hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर. और तारे जमी किस किसने देखी है तारे जमी पर, सच बताना मुझे. मेरी लाइफ में खुद का एक टर्निंग पॉइंट आ गया था तारे जमी पर, जहाँ पे मेरी फैमिली जब मैं स्टडी में वीक हुआ करता था ना, तो मेरी मम्मा को बेचारी को जिसको मेरे पर इतना गुस्सा आया करता था, वो प्यार में बदल गया था, तरस में बदल गया था. यार भला उस ईशान अवस्थी और उससे बढ़िया तो भला हो

जब माँ का प्यार फिल्मों में हो या रियल जिंदगी में, हर डायलॉग से ज्यादा फील होता है, नहीं? और माँ बेटी की वो बॉन्डिंग सीधा दिल को हील करती है कि नहीं? हाई, दिस इज मी आरजे आकाश, आपकी दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर फिल्मी फ्लैशबैक के सफर में चलते हैं आगे की ओर।

Flashback. आज मदर्स डे है और आज मदर्स डे के स्पेशल अवसर पर हमने अपने सभी लिसनर से पूछा था कि आपकी फेवरेट माँ बेटे वाली बॉलीवुड मूवी कौन सी रही है और क्या कमाल का रिस्पांस आया यार, एक से एक नाम आए। लेकिन दोहा से नेहा इस समय मुझे सुन रही है और इनका आंसर सबसे जल्दी आया विद इन 3 सेकेंड्स। इन्होंने लिखा है, मुझे ये बंधन तो प्यार का बंधन है, करण अर्जुन में राखी जी का डायलॉग, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आज भी गूज़बम्प्स देता है। और साथ ही साथ ये अपने घर से दूर है, इनको आज माँ की याद भी आ रही है, इसलिए ये चाहती हैं कि मैं इनकी मम्मा का नाम आज शो में ले दूँ। कि मम्मा का नाम है रेखा जी, क्या नाम है यार रेखा जी, वाह। तो रेखा जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और आपको भी मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। आप खूब अच्छी लंबी उम्र जिए, स्वस्थ रहें, वहां से भी आप एंजॉय कीजिए और इस बेटे पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जी बिंदास।

0: जिम्मेदारियां, जो इंसान सबसे ज्यादा उससे डरा करता था, आज वो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियां खुद पर लेकर बैठा है। कोई बेटा बनके, कोई बीवी बनकर, कोई माँ बनके। कहते हैं माँ का जो दर्जा होता है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है और ऊंचा होता है। वो शायद इसलिए क्योंकि माँ होती है तो पूरा घर सेफ फील करता है। नहीं,
1: डिजिटल डायरी।
0: Hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर। और मैं इस समय अपनी किताब का पन्ना खोल चुका हूँ, यानी कि डिजिटल डायरी। इस पन्ने पे लिखा है जिम्मेदारियां। एक लड़की जो पगली सी होती है, जिसको अपना खुद का तक इतना ख्याल नहीं होता। शादी होने के बाद घर गृहस्थी जिम्मेदारियां, और जिस दिन वो माँ का दर्जा मिल जाता है, बस उस दिन से वही एक नादान लड़की, पगली सी लड़की, कब में इतनी ज्यादा जिम्मेदार लड़की बन जाती है, एक जिम्मेदार औरत का रूप ले लेती है, पता ही नहीं चलता। नहीं, मुझे लगता है कि हर एक वो बच्चा जिसने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है, अपनी माँ को खुद को बड़ा करते देखा है, अपनी माँ को हमारे लिए अपनी इच्छाओं को मारते हुए देखा है, शायद वो जानता है कि हमारी माँ कितनी स्ट्रांग है। तो आज अपनी अपनी माओ का नाम लिखकर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो। हाय आरजे आकाश, रेडियो ऑलिव का पेज है इनबॉक्स में, हाय आरजे आकाश, और बताइए मुझे अपनी माँ का नाम। हर एक उस माँ का नाम हीरोइन से कम थोड़ी है। ऑब्वियसली लाइफ की रियल सुपर हीरोइन है वो, तो उनका नाम तो आज इंस्टाग्राम पे आएगा और रेडियो पर गूंजेगा, तभी तो बात बनेगी ना। जी ओ बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज। रेडियो ऑलिव पर सुनिए ग्रेट मॉम्स की ग्रेट स्टोरीज।
1: हम सब जानते हैं माइकल जॉर्डन को, द फ्लाइंग लेजेंड। मगर लेजेंड बनने से पहले एक 21 साल का लड़का जो नाइकी के साथ मीटिंग तक नहीं करना चाहता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तब उनकी माँ डेलोरेस जॉर्डन ने कहा, बेटा फ्लाइट पकड़ो और मेरी बात सुनो। वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, वो एक विजन था। माइकल की माँ ने इंसिस्ट किया कि हर जूते के सेल पर माइकल को 1% मिलना चाहिए। उन्होंने माइकल को सिखाया कि अपनी वैल्यू कैसे पहचानते हैं। माँ सिर्फ हमारे लिए खाना नहीं बनाती, सिर्फ प्यार नहीं करती, वो हमारा फ्यूचर भी डिजाइन करती है। टुडे वी सेलिब्रेट द वुमन हु टॉट द गोट हाउ टू फ्लाई। दिस इज फॉर द फर्स्ट सीईओ ऑफ आवर लाइव्स। हैप्पी मदर्स डे। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: 106.3 Radio Olive,
1: Radio Olive, your happiness frequency.

अच्छा, आपने बहुत कहानियां सुनी है मेरी जुबान से, लेकिन आज एक कहानी वो जो मेरी लाइफ की रही है। छोटी सी सीख है, लेकिन शायद इन थालियों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपकी दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज के सफर में एक रात एक कहानी। और ये कहानी है वो कांच की फेवरेट वाली प्लेट की, जो मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती थी। माँ कहती थी कि बेटा कतर जा रहा है, तो एक काम कर, स्टील की थाली भी ले जा अपनी फेवरेट थाली, लेकिन तू स्टील की रख, तू मान मेरी बात, जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। पता, मैं जिद करके कांच की वही प्लेट रख के लाया। सिर्फ मुझे लगा था कि नहीं, वही चलेगी। जब वो प्लेट यहाँ आया या उसमें खाना खाया, तो अचानक से एक दिन मेरे हाथ से छूट के टूट गई वो मेरी फेवरेट प्लेट। और उसी प्लेट में मेरा खाना रखा था, वो भी वेस्ट हो गया। खुद ही अपने हाथों से समेट कर मैंने उसे डाल दिया कूड़ेदानी में। फिर अब भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन गुस्सा भी बहुत था। अगले दिन मार्केट गया, रात भर कुछ नहीं खाया हुआ था, ढूंढा बहुत, वो सेम प्लेट नहीं मुझको मिल कर दी। वापस घर आया, फिर गुस्से में भूखा सोने को कहा, लेकिन पेट ने दुहाई लगाई, खाना दे दे भाई। मुंह मोड़ा तो अचानक से वो नीला बैग दिखा जो मेरी माँ ने पैक किया था। पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई, वो बैग खोल के देख, बैग में देखा एक स्टील वाली थाली रखी थी। पता है उस दिन मुझे क्या समझ आया, जिंदगी में हमेशा जरूरी नहीं कि पसंद सबसे बेहतर हो, कई बार तजुर्बा ज्यादा बेहतर होता है। आर वापस कहीं जाएगी नहीं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास। हैप्पी मदर्स डे।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: ये है मिडनाइट लव।
0: ये है मिडनाइट।

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: कहते हैं कि आप जब दुनिया से हर जगह से हार जाओ, परेशान हो, बस अपनी माँ के पास जाना, चाहे माँ के साथ भी कितनी लड़ाई हो चुकी हो, बहस हो चुकी हो, माँ नाराज हो, आप नाराज हो, उस समय सब साइड रख के ना, बस माँ की गोद में सर रख के आंख बंद करके लेट जाना, उसके बाद देखना अचानक से एक मिराकल होगा, अचानक से आपका मन शांत होगा, माँ का हाथ सर पे फिरते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप।
0: हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपकी दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। आज सोने से पहले एक बात याद रखना दोस्त, दुनिया के आगे रो लेते हो, दुनिया को सब कुछ बताया तो ऑफिस का किया धाया मैनेजर और ऑफिस में बॉस के आगे रो लेते हो, दोस्तों ने कुछ बुरा किया होता है तो अकेले में चुपचाप रो लेते हो, दुनिया सताती है कहां कहां नहीं आप रोते हो, लेकिन अपनी मां से नहीं सब कुछ छुपा लेते हो। क्यों? क्योंकि वो शायद परेशान होगी हो सकता है वो परेशान होगी, लेकिन शायद जब आप उससे सब शेयर करोगे ना एक दोस्त मानकर, तो हो सकता है वो तुम्हें सॉल्यूशन भी देगी, ऐसा सॉल्यूशन जो आपको स्टार्टिंग में लग सकता है क्या मां आप भी, लेकिन सही में अगर आप सोच के देखोगे ना तो शी इज परफेक्ट इन ईच सेंस। आरो ऑफिस, माँ का कहा कभी गलत हुआ है क्या, तो इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि एक बढ़िया सा गाना चलाओ। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, एक उनकी स्पेशल फरमाइश पे आज का एक प्यारा सा गाना, जियो बिंदास, हैप्पी मदर्स डे माँ।

तो सुना, आप देखते देखते एक और शाम ढलने को आए, लेकिन याद रखना माँ के चेहरे की मुस्कान कभी ना ढले, वो हमेशा खिली रहे। हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑल एफ। आज तो भैया क्या मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ है, सबके स्टेटस देखे, कुछ रील्स पर कमेंट भी किए और कुछ माओं से आज मेरी बात भी हुई। लिटरली मदरहुड एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है और उतना ही मुश्किल भी, लेकिन हर एक माँ को सल्यूट होता है आज के दिन। नहीं, वैसे तो माँ से हर दिन है मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन स्टिल आज का दिन उनके लिए सबसे स्पेशल दिन है, तो इसलिए अपनी माँ को हर रोज स्पेशल फील कराइए, क्योंकि आप उन्हीं से हैं जनाब। चलता हूँ मैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब भी अकेला फील हो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे, ताकि माँ को कभी ये ना लगे कि मेरा बच्चा घर पे अकेला है या फिर जहाँ रह रहा है वहाँ वो अकेला है, बस लगे कि उसके साथ उसका दोस्त है ना, मेरा दूसरा बेटा आकाश। तो चलिए हम बातें करेंगे ढेर सारी, इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके रिश्तेदारी गहरी कर लीजिए, हाय आरजे आकाश, और उसके बाद आपकी जो भी दिल की बात है आप शेयर कर सकते हैं, ना कुछ बात करने को तो बस यही बताएं ना आज के शो में कौन सा गाना आज आपको सबसे प्यारा लगा। चलता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास, गुड नाइट, बाय बाय।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.